अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडीकर। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

उनके 12:30 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार, दिन के 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत, और दिन के 1:15 पर पुनः हम आपको फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा इस सभा में सुबह 10:00। सुबह 11:00 आप सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। सुबह 11:10 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप पुनः सुनेंगे दिन के 12:00।

दोपहर 2:30 पर आप एक बार फिर से फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। दोपहर 3 हम आपको सुनवाएंगे लोक गीतों का कार्यक्रम। संध्या 5 युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम तरुण कुसुम। संध्या 5:40 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। विद्यापति गीत यह कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:10 पर। संध्या 6:30 पर ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम जागरूक गांव। संध्या 7 आप सुनते हैं किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 7:52 पर एक बार फिर से आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण होगा रात्रि 8:15 पर। और रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10 और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इसमें हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आर्थिक विषयिकया मन्त्रिपरिषद समित्या अस्मै विपणन सत्राय 14 ग्रैष्मिक सस्यानां MSP न्यूनतम समर्थन मूल्यानि वर्धयितुम् अनुमोदितम्। नवदेहल्यां केंद्रीय मंत्रिसभा सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनेन निर्णयेन उत्पादकेभ्यः तेषां उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति इति।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: अस्य सत्रस्य विपणन कालाय ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यानां वृद्धिं स्वीकृत्य नवदेहल्यां केन्द्रीय मंत्रिसभायाः निर्णयः देशे कोटिशः खाद्य प्रदायकेभ्यः स्वोत्पादानां उचितं लाभप्रदं च मूल्यं प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं करिष्यति इति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वस्तनादारभ्य अस्य मासस्य 20 दिनांकपर्यन्तं UAE, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां यात्रायां भविष्यति। विदेश मंत्रालयस्य सचिवः CB जॉर्जः सूचितवान् यत् पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य प्रथमपादे श्रीमोदी UAE अध्यक्षं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यनेन सह मिलिष्यति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और

0: डिप्लोमेसी, जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा
1: और साथ ही मैं हूँ मनोज। आप तमाम श्रोता को मनोज का प्यार भरा नमस्कार। साथ ही मणिकांत जी आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार मनोज जी, कार्यक्रमक शुरुआत हमरा लोकन करै छी सुविचार सा।
1: जरूर। एक पल पूरे दिन को बदल सकता है, एक दिन पूरे जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये विचार हैं गौतम बुद्ध के।
0: और जहन सुविचार हमरा लोकन सुन लै छी तकरा बाद उनटबै छी इतिहासक पन्ना। इतिहासक पन्ना में अजुका तिथि अर्थात 14 मई किया विशेष रूप से जानल जाइए, ताहि पर एक नजर घुमा लै छी।
1: आज ही के दिन 2001 में भारत और मलेशिया में

0: साथ समझौता हुआ था। 2007 में जापान ने अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। 1892 में अरुण चंद्र गुहा प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता थे का जन्म हुआ था। 1883 में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रसिद्ध न्यायवादी और अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे, इनका भी जन्म हुआ था। 1923 में मृणाली सेन भारतीय फिल्म के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक थे का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन हम लोग मना रहे हैं विश्व प्रवासी पंछी दिवस।
1: तो ई छल आजुक इतिहास, और इतिहास के बाद वर्तमान में आबी। वर्तमान में एखन जे ऐसे जेठ मास चल रहा है, और जेठ मास में जेठक दुपहरिया बदनामी हुई छे, लेकिन एखन ओ बेर नहीं आयल है। एखन हमरा लोकन के मेघ झाँप तोप और अन्हर बिहार इस सब सा सामना चल रहा है, और मौसम कुल मिलाकर अगर कही तो बड़ा सुहावना है एखुनका स्थिति में। जना जेठ में तपिश रही छले, भ सके आब वाला दिन में तपिश हुए। मौसम पूर्वानुमान जो कही है तई में तो लगित रहिए जे आगा आब वाला दिन में जे छै से गर्मी हमरो सबके देख पड़त और झेल पड़त ओकरा। लेकिन एखन से मौसम मोटा मोटी कही तो खूब सोहनगर रही है। ऐ सोहनगर मौसम के आनंद हमरा लोकन उठवी और आनंद से जीवन के गति के आगा बढ़ाबी, और अपना कार्यक्रम के सेहो आनंदपूर्वक आगा बढ़ैत सुनी सुंदर सनक ई मैथिली सुगम संगीत।
0: आइए सुनते हैं इस प्यारे से मैथिली गीत को।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अभी हम लोग सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत, ऐसे साथ चलते हैं जहां हम सबों को इंतजार रहता है। जी हाँ, अपने आस पड़ोस की गतिविधियां संस्कृति पर डालते नज़र यानी कि हालचाल लेकर के उपस्थित हैं मणिकांत जी।
2: नमस्कार। राज्य में चरपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदवा पर सरकार महिला लोगन के 1,00,000 रुपया तक प्रोत्साहन राशि देत, जखनकि दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदवा पर हर वर्ग के लोग के 12,000 रुपया तक के प्रोत्साहन राशि भेटत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षता में कैल भेल मंत्रिपरिषदक बैसार में मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के मंजूरी देल गेल। प्रोत्साहन राशि वर्ष 2026-27 के लिए देय हैत। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी जनौलनि हैं जे राज्य मंत्रिपरिषद के बैसार में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के स्वीकृति देल गेल। योजना वैश्विक अभियान EV30@30 के लक्ष्य के पूरा करवा में सहायक है। एकरा अंतर्गत राज्य सरकार वर्ष 2030 तक नव वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन के भागीदारी सुनिश्चित करवा के लक्ष्य निर्धारित कलक है। तिपहिया ईवी पर 60,000 तक सहायता प्राप्त है। केंद्र सरकार पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल एवं उर्वरक के अधिक खरीद से विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहल दबाव के रोकवा के गैर जरूरी आयात पर अंकुश लगेबा के लेल सोना आ चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दलक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचेबा के लेल ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोना खरीद एवं विदेश यात्रा के स्थगित करवा सनक उपाय के आह्वान के बाद ई घोषणा कैल गेल है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE काल 12वीं कक्षाक नतीजा घोषित कर दलक। एहि बेर पटना जोन के 74.45%

विद्यार्थी सफल भेला है। ई पछिला बेर 82.86% के मुकाबला 8.41% कम है। ओतहि देशभर में 85% से अधिक छात्र छात्रा उत्तीर्ण भेला है, जे गत सालक मुकाबला करीब 3% कम अछि। अमूल और मदर डेयरी काल्हि सँ बढ़ल लागत के हवाला दैत पूरा भारत में दूध के दाम में 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ेबाक घोषणा कयलक है। नव दर आइ सँ लागू भऽ गेल। अमूल पछिला बेर दामक बढ़ोतरी मई 2025 में कयने छल, जहन कि मदर डेयरी अप्रैल 2025 में अपना उत्पादक दाम में बढ़ोतरी कयने छल। राज्यकर्मी के महंगाई भत्ता में 2% के बढ़ोतरी कयल गेल है। आब हुनका 58% के जगह 60% महंगाई भत्ता भेटतनि। ई वृद्धि 1 जनवरी 2026 सँ प्रभावी भऽ जायत। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हालचाल में पुनः अपने स्वागत है। योजना एवं विकास विभाग के 2 दिवसीय प्रमंडल वार समीक्षा बैठक के समापन कल भेल। बैसार के अंतिम दिन पटना, मगध, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकासात्मक योजना एवं कार्यक्रम के विस्तृत समीक्षा कल गई। बैसारक अध्यक्षता विभाग के प्रधान सचिव मयंक बरबड़े एवं सचिव कमल तनुज कैलन। समीक्षा बैसार के मध्य योजना के प्रगति, कार्यान्वयन के स्थिति, वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि आ लंबित मामला पर विस्तार से चर्चा भेल। युद्ध सनक हालत के लेल आम नागरिक के तैयार करबा के लेल आई राजधानी पटना समेत 6 जिला में हवाई हमला के पूर्वाभ्यास करल जायत। एहि मध्य पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया आ कटिहार जिला में साँझ 7:15 तक पूर्ण अन्हार ब्लैकआउट रहत। साँझ में 7 बजे खतरा के सायरन बजना संगे एहि जिला के बिजली गुम भ जायत आ परिवहन व्यवस्था सेहो ठहरि जायत। एहिसँ पहिले पछिला साल ऑपरेशन सिंदूर के मध्य 7 मई के एहन पूर्वाभ्यास कयल गेल छल। पूर्वाभ्यास के दौरान आकस्मिक सेवा सँ जुड़ल एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड आ अस्पताल आदि जगह पर सेहो ब्लैकआउट रहत। जिला प्रशासन संबंधित प्रशासन के निर्देश दलक है, संगे जिला प्रशासन के सार्वजनिक स्तर पर अलर्ट रहबाक निर्देश देल गेल है। मौसम पूर्वानुमान में कहल गेल है जे आई दरभंगा आ लग पास में मेघ लागल रहत, हल्लुक बारिश के संभावना सेहो बनि रहल है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहबाक संभावना है, जहन कि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के पीजी अंग्रेजी विभाग में पिछला मंगल के स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। प्रतियोगिता में कुल 46 छात्र भाग लेने, जाहि में संयुक्त रूप से रुबीना परवीन आ सत्यम के प्रथम, साक्षी, कृष्ण मुरारी, सिमरन के संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त भेलन, जखन कि श्रेया तेसर स्थान पर बनल रहली। बहेरी प्रखंड क्षेत्र के बंडेहुली स्थित लोरिक धाम में आयोजित लोरिक महोत्सव सह मेला के दोसर दिन काल्हि रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम सह दर्शक के मौन ओतप्रोत होत रहलन। भोजपुरी एवं मैथिली कलाकारक मनमोहक प्रस्तुति सह पूरा महोत्सव परिसर रात तक आनंदमय बनल रह।

लोकगीत, पारंपरिक संगीत आ रोमांटिक गीत पर युवा, महिला आ बुजुर्ग लोकन झूमत देखेला। कलाकारक प्रस्तुति पर दर्शक लोकन थोपड़ी पीट, सिटी बजा आ मोबाइल फ्लैश लाइट से उत्साहवर्धन करित रहलन। दरभंगा जिला सिंहवाड़ा के सनापुर में डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू करवाक लेल प्राचार्य मुश्ताक अहमद एवं अर्थशास्त्र के व्याख्याता मोहम्मद तस्लीम के ओहिठाम पदस्थापित कयल गेल। MKS कॉलेज चंदौना में एत हिनका हस्तांतरित करायल गेलन। हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं इतिहास छः विषयक पढ़ाई के संग सनापुर में डिग्री कॉलेज आरंभ कयल जायत। नामांकन के लेल छात्र समर्थ पोर्टल पर आवेदन करता। संभावित रूप से 15 मई से नामांकन के प्रक्रिया शुरू भ जायत। एक ही विद्यालय परिसर में वर्ग 1 से ल कर BA तक के पढ़ाई के व्यवस्था तत्काल चलित रहत। मुख्यमंत्री के पदभार संभारवाक बाद सम्राट चौधरी आई पहिल बेर दरभंगा आबि रहल छथि। ओ एत विकास के चलि रहल कैटा कार्य सभक समीक्षा करता। पटना एयरपोर्ट से चलकर 11:35 पर दरभंगा एयरपोर्ट पहुँचता। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के CISF के हस्तांतरित करवाक लेल आयोजित कार्यक्रम में भाग लेता। एकरा उपरांत एम्स के निर्माण कार्यक प्रगति के समीक्षा करता। संगे DMCH में निर्माणाधीन अस्पताल के कार्यक प्रगति के सेहो समीक्षा करता। दरभंगा एयरपोर्ट से ओ 12:10 पर पटना के लेल प्रस्थान कर जता। ई जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी दिस से देल गेले। काल्हि दरभंगा जिला के बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय बेनीपुर में SDM मनीष कुमार झा के अध्यक्षता में जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबा नागार्जुन स्टेडियम कमिटी के सब सदस्यक बैसार भेल। बैसार में सर्वसम्मति से स्टेडियम के सुरक्षा के लेल 2 सुरक्षाकर्मी के प्रतिनियुक्ति, स्टेडियम के मैदान के समतलीकरण हेतु टर्फ पिच के छोड़ कर वर्षा पूर्व जोतवा के लेल सहित अनेक निर्णय लेल गेल। एक संग आजुक हालचाल संपन्न भेल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इसके साथ डालते हैं कुछ लोकल अपडेट पे नजर। तो आज DMCH में कौन विभाग में कौन डॉक्टर बैठेंगे उसके बारे में जानते हैं। मेडिसिन विभाग में बैठेंगे डॉक्टर RK झा, सर्जरी विभाग में होंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार शाह, नेत्र विभाग में होंगे डॉक्टर आसिफ शहनवाज, ENT विभाग में होंगे डॉक्टर अली इमरान, शिशु रोग विभाग में होंगे डॉक्टर रिजवान हैदर, ऑर्थोपेडिक में होंगे डॉक्टर रामाशीष यादव, गायनिक में होंगे डॉक्टर अर्जना भारती, स्किन एंड BD में होंगे डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता। बात अगर नगर निगम की करें तो नगर में पीओ जल, स्ट्रीट लाइट, मिर्च पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर के निगम के नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर है 62027774000 पर शिकायत कर सकते हैं। बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर का नंबर है जो शहर के मोबाइल नंबर है 77-63-81-87-77-7 पे, ग्रामीण का है 92-64-45-64-12 पे, बेनीपुर का है 76-33-99-78-31 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर रेलवे की बात करें तो 8:26 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:33 पर है पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस और शाम 7 है नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। अगर विमान की बात करें तो 9:30 पर है मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर है

0: दिल्ली के लिए, 12:25 पर हैं कोलकाता के लिए, 12:50 पर हैं दिल्ली के लिए, 1:35 पर हैं मुंबई के लिए, 3 बजे हैं हैदराबाद के लिए और 4:35 पर है दिल्ली के लिए। तो
1: इछल लोकल अपडेट आ अब कार्यक्रम के हमरा लोग आगा बढ़बित गप सप करी तो आई प्रवासी पक्षी दिवस है जे चर्चा मनोज जी आजुक इतिहास में केने छला है। तो प्रवासी मात्र मनुखे नहीं हुई है, मनुखक अतिरिक्त जे प्राणी है वह प्रवासी हुई है आ उनमें पक्षी जे स्वतंत्र उन्मुक्त है ओकरा लेल कोनो सीमा नहीं छे, ओकरा कोनो लाइसेंस के काज नहीं हुई छे, ओकरा कोनो पासपोर्ट के वीजा के काज नहीं हुई छे, उन्मुक्त है ओ एक देशक सीमा से दोसर देश में सहजतापूर्वक चल जाइए आ से तेना जाइए जे मनुख ओतेक सोचियो नहीं सकैए। ओ हजारों हजार मील के दूरी तय कऽ कऽ अपन निर्धारित समय पर नियत समय पर ओतय पहुँच जाइए। तो ओहि प्रवासी पक्षी के जे हमरा लोकनिक ओत अगर अबैए कतौ जाइए एहिठाम दरभंगा में कुशेश्वर स्थान जे से एकटा पक्षी के बहुत बड़का ओहिठाम व्यवस्था रहबाक छै तऽ ओतय अभयारण्य पक्षी अभयारण्य और बगल में कावर झील है ओहिठाम जे छै से बहुत बृहत मात्रा में पक्षी विदेश से अबै छथि, साइबेरियन खास कर जे पक्षी सब छथि से एतय अबै छथि। तो हुनका सबक सुरक्षा हुनक स्वागत हमरा लोकन के निश्चित रूप से करबाक चाही।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मणिकांत जी कि हम लोग मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और देखते हैं कि कुछ न कुछ दिवस हम लोग मनाते ही रहते हैं पर कहने में ही अच्छा लगता है और बोलने में, बल्कि हमें करना भी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण और जैविक विविधताओं के महत्व को समझने की यह महत्वपूर्ण अवसर है। प्रवासी पक्षी का आपने सही कहा कि देश विदेश से पक्षी, ना उनको पासपोर्ट का वीज़ा और ना ही किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, पर जब वो ठान लेते हैं जहाँ वहाँ चले जाते हैं, जो मौसम, भोजन और पर्यजन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी यात्रा करते हैं। ये पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अलग अलग देशों में और महाद्वीपों तक पहुँचते हैं। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो वार, हेडेड गज जैसे कई पक्षी भारत में भी आते हैं। ये पक्षी पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते हैं। विश्व पक्षी दिवस हमें प्राकृतिक और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देता है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी इन सुंदर पक्षियों को देख सकते हैं और प्राकृतिक का आनंद ले सकते हैं। और पर्यावरण के स्वच्छ रखने के लिए ही प्राप्ति या यह सब दिवस मनाया जाता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे देखा देखी मनाते रहे, करते रहे, इस चीज़ के बारे में जानकारी उन्हें मिलते रहे।
1: प्रवासी पक्षी जे छथि से अपना नियत समय पर जहन ओतय बहुत ठंडा पड़ लगै छै तहन जे छै से ओसब ओहिसँ पहिले अपन उड़ान भरै छथि, एतय चलि अबै छथि, एतय आबि कऽ रहै छथि और प्रजनन क्रिया जे छै से एतय करै छथि और नव बच्चा के लऽ कऽ फेर एतयसँ उड़ि कऽ अपना गंतव्य कऽ फेर पहुँच जाइ छथि। और एहिठाम आबि कऽ जे बात अहाँ कहलहुँ हँ जे पर्यावरण के संतुलित बनेबा में प्रवासी पक्षी के जे छै से बहुत महत्वपूर्ण स्थान छै और ओकर संरक्षण कोना हुए, ओकरा हमसब मारी नहि, एहि बात पर मे जे छै से बहुत ध्यान देबाक चाही। और पछिला बहुत साल में जे छै से एहि पर मे बहुत कड़गर कड़ाई से जे छै से पालन कयल गेलै, सरकार दिस से एकरा लेल बहुत कड़गर डेग सब उठायल गेलै, तैं आब जे छै से प्रवासी पक्षी जे अबै छथि बड़ा सुरक्षित ढंग से एतय आबि कऽ रहै छथि और एतय रहि कऽ फेर पुनः ओ लोकन वापस चलि जाइ छथि। तऽ अजुका जे दिवस अइ ताहि दिवस पर मे हमरा लोकनि संकल्प ली जे हमरा ओतय जे प्रवासी पक्षी आबथि हुनकर हम स्वागत करियनि, हुनकर हम सत्कार करियनि, नहि कि हुनका बझाबी कि नहि।
0: हाँ बिल्कुल सही बात।
1: कार्यक्रम में गप सप तऽ होइत रहतै, नमस्कार मिथिला कार्यक्रम सब दिन हमरा लोकनि सुनै छी भोरमे 7:05 सँ 7:55 तक और रंगबिरही सामग्री एहिमे परसैत रहै छी। ओही रंगबिरही सामग्री में फिल्म संगीत के सेहो नंबर छै, तऽ आउ सुनी सुंदर सनक आजुक ई फिल्म।

छुप छुप के प्यार किया जाता है चोरी चोरी, बहुत सुंदर ई बात ई गीत एखन हमरा लोकनि जे छै से गीतक माध्यमे बहुत रास बात जे छै से ओहिमे आबि जाइ छै। संगीत साहित्य जे चीज छै से समाजके बहुत

0: रास बात के बड़ा सहजता से कही जाए छे तो आनंद लागल ई गीत सुनकर हमरा श्रोता के सेहो निक लागल हेतन ई विश्वास है। और देखो मनोज जी जे अगर अहाँ के जीवन में खुशहाली अनबा के तो अपना परिवार के खुश क के राखब से आवश्यक छे। और अगर अहाँ के घर परिवार खुश है तो अहाँ के समाज में वो खुशहाली से पसरत, वो सुगंध जकाँ से पसरऽ लगे छे। तो जीवन में खुश रहब से बहुत आवश्यक छे। और अहाँ अगर अपने खुश रहब तो अहाँ के परिवार खुश रहत, अहाँ के परिवार अगर खुश है तो समाज खुश रहत। तो ई प्रयास हर व्यक्ति के करबाक चाही जे जीवन में खुशहाली कोना आवे, केना हम अपन जीवन बसर नीक ढंग से करी और केना आनंदित रही, कखनो जे छै से कनन मुँह भौक नहि रही, घुघना नहि लटके नहि रही, ई कोना हेतै। ताहिमे हरदम प्रयासरत रहबाक चाही। अगर अहाँ प्रसन्न चित्त रहब तो सब काज जे छै से बढ़िया से संपादित होयत, सब काज नीक जकाँ संपादित होयत। आ वएह अगर घुघना लटकेने रहब, वएह अगर सोच में पड़ल रहब, चिंता में पड़ल रहब, तो निको जे काज हुआ वाला है ओहो भंगठि जायत, ओकरो में गड़बड़ी भऽ जायत। तैं जीवन में खुशहाली आनब बहुत महत्वपूर्ण छै। और ओ ककरो अनका पुते नहीं अबै छै खुशहाली, अहाँ स्वयं से खुशहाली जे छै से आनि सकै छी। और अगर अहाँ अपना जीवन में से खुशहाली आनि लेलहुँ तो अहाँ के बुझू जीवन एक हिसाब से सार्थक भऽ जाइए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका जीवन परिवार और समाज से जुड़ा होता है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। यदि परिवार खुशी शिक्षित और संस्कारी होगा तो समाज में भी खुशहाल और उन्नत बनेगा। अगर देखा जाए तो ये बात है कि आपके आस पड़ोस में ही है कोई आपसे अच्छे हैं संस्कारी लोग हैं वहाँ पे, तो आपको बच्चे या जो भी परिवार के लोग हैं उनके देखा देखी करके कुछ ना कुछ आप में भी परिवर्तन अवश्य होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए अगर देखा जाए तो खुशहाल परिवार खुशहाल समाज की नींव है। परिवार में प्रेम सहयोग सम्मान और समझदारी होने से समाज की शांति और भाईचारा भी बढ़ता है। देखा जाए तो मणिकांत जी, परिवार वह स्थान है जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है और जीवन के साथ प्रथम संस्कार प्राप्त करता है। माता पिता, दादा दादी और परिवार के अन्य सदस्य भी बच्चे को अच्छे आचरण, अनुशासन और नैतिक की शिक्षाएं देते हैं। यदि परिवार में आपसी प्रेम और सम्मान हो तो बच्चे का मानसिक और नैतिक विकास भी अच्छी ढंग से होती है। वे बड़े होकर के अच्छे नागरिक बनते हैं और समाज की प्रगति में योगदान देते हैं।
0: परिवार के जे छे, घर के जे छे, से पहिल पाठशाला कहल गेलै है। और धियापुता के सबसे पहिल सीख जे छे से अपने घर में भेटै छे। घर में जे चीज अहाँ सिखेबै, जेहन वातावरण में अहाँ रखबै, ओ ओहने धियापुता के मनसपटल पर जे छे से उतरै छे। और ओ बच्चा में नव चीज सिखबा के जिज्ञासा बहुत बेसी होइ छे और नकल करबा के सेहो ओकरा में प्रवृत्ति बहुत बढ़िया होइ छे, बहुत नम्हर होइ छे। तो जे काज ओ देखै छे बच्चा सह काज करै छे। तो जतय हम सब चर्चा करै छी जे खुशहाली के बात, तो अगर सब गोटा परिवार में प्रसन्न चित्त रहब, हँसैत बजैत रहब, तो ओ धियापुता जे छे, जे आबय वाला भविष्य छे, ओहो जे छे से वह देख कर और ओहने वातावरण में अपन जीवन के आरंभ करत। आ वही ट्रैक पर ओ चलत, वही लाइन पर चलत, वही मार्ग पर चलत। तो हमरा सबके ई जरूर चाही जे अपना वातावरण के, अपन पारिवारिक जे माहौल है, वही माहौल के हरदम खुशमय बना कर राखी, खुशनुमा राखी। और एहन नहीं जे हरदम काई किचकिच खचखच हल्ला किचा एक दूसरा से झगड़ा, ई सब जे चीज छे से अहाँ के अवगत के दिस मने निच्चा दिस कर लो जाइए।
1: हाँ हाँ।
0: मने ऊपर बढ़ेवा में ई सार्थक नहीं भ सकैए, ई जखन तखन अहाँ के नीचा मुँहे धसायत। तैं ओहि सबसँ बचिकऽ रही आओर प्रसन्न चित्त रही, प्रसन्न चित्त रही, धियापुताके संस्कार नीक दिए, पढ़ाइ लिखाइ ओकर नीकसँ केना हेतै, बच्चा केना पढ़त, केना ओ आगाँ बढ़त, ओकर भविष्य कोना बनतै, एहि सबपरमे जे छै से लागल रही। आओर अगर अहाँ नीक काजमे लागल रहब तऽ स्वतः अधलाह काज दिससँ मोन जे छै से हटल रहत आओर अहाँ खुशहाली अपना जीवनमे आनि लेब। आओर एक एकटा घर अगर कोनो टोलमे 10 घर छै या 20 घर छै, 25 घर छै, ओहिमे अगर 20-25 घर मानि लिअ छै, ओहिमे 20 घरमे अगर खुशहाली छै आओर 5 घरमे हरदम जे छै से कहीँ कहीँ होइत रहै छै, तऽ ओ कहीँ कहीँके असर जे छै से ओहि 20 घरपर पड़ै छै, तऽ ओ समाज जे छै से फेर खुशहाल नहि भऽ पबै छै। लेकिन अगर 20 घरमे खुशहाली छै आओर नीक वातावरण रहि रहलैए तऽ ई चाही जे ओहो जे 5 घर छै ओहो आनन्दके सागरमे उबडुब करै आओर ओहो ओहिसँ सीख लऽ कऽ अपना ओतऽ जे छै से खुशहाली आनै। तऽ खुशहाली अनलासँ समाज अहाँके उन्नतिके दिस बढ़ै छै, समाज उन्नत करत तऽ देश उन्नत करत, देश उन्नत करत तऽ हमरा लोकनि तऽ स्वतः उन्नत कऽ जायब। तऽ कुल मिलाकऽ हमरा लोकनिक जे एतेक चर्चा अइ, एहि चर्चाके जड़िमे बात इएह अइ जे प्रसन्न चित्त रही आओर प्रसन्न चित्त रहि कऽ अपन जीवन यापन करी आओर एक दोसराके प्रति प्रेम सद्भाव ई सभक जे छै से भाव राखी आओर से जखने अहाँ राखब तऽ एक दोसरासँ प्रेम जे छै से स्वतः होइत रहत आओर द्वेष नहि होयत। अगर अहाँ ईर्ष्या द्वेष एकरा सबके पोसि लेब, एकरा सबके अहाँ अगर अपनामे आत्मसात कऽ लेब तऽ अपने तऽ परेशान रहबे करब, अपने तऽ अवसादग्रस्त रहबे करब, दोसरोके जे छै से ओहिसँ अहाँ लाभ नहि पहुँचा कऽ हानिए पहुँचबैत रहबै कि नहि।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आप दूसरे को देख करके जलते हैं या उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं तो उसके साथ साथ हम भी परेशान रहेंगे, क्योंकि वो अपने कार्य करने में परेशान है, आप उसको नीचे करने में परेशान लगे तो समस्या दोनों जगह है। तो इसी के लिए खुशहाल रहिए, जो जितना में आप हैं, जितना आपके पास है उसमें खुश रहने का कोशिश कीजिए, परिवार को खुश करने का कोशिश कीजिए। और कोई आगे बढ़ रहा है आपसे तो उनको बढ़ने दीजिए, क्योंकि वो अपने मेहनत के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने मेहनत के हिसाब से। पर जलना ईर्ष्या करने से हमारा अपना क्षति है, बल्कि हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। पर जितना उसमें खुश रह के हम अपने परिवार को खुश रखेंगे, समाज को खुश रखेंगे। बहुत अच्छा मणिकांत जी कहा कि जितने में हैं उतना में ही हम खुश रहेंगे, हमारा 10 घर है, 20 घर है, तो उसमें हमें खुशी मिल करके रहना चाहिए, जिससे हमारा परिवार बच्चे पर अच्छे असर पड़े, संस्कार पड़े।
0: ककरो संगे अगर अहाँ के प्रतियोगिता करवा के तो एकटा जे लकीर खींचल छे, मान लिये 5 के लकीर खींचल छे, तो ओकरा लकीर के हम मिटेबा के प्रयास नहीं करूँ, अहाँ कोशिश करू जे 5.5 के लकीर हम अपना प्रयाससँ खींच दिए, जाहिसँ ओहिसँ आगाँ हमर लकीर चलि जाए, हमर चेन जे छै से ओहिसँ आगाँ बढ़ि जाए आओर हम प्रगतिके पथपर आगाँ बढ़ि जाए। ई नहि जे ओकर लकीरके हम मिटाबी, ओ किया 5 लकीर खींचने अइ, ओकरा हम मेटाकऽ 4 कऽ दिए, 3 कऽ दिए, तऽ ओहिमे जे अहाँ ऊर्जा नष्ट करब तऽ नहि अहीँके कोनो लाभ हैत आ सामनेवलाके तऽ लाभ नहिए हेतै। तऽ हरदम ई प्रयास रहके चाही जे हम नीकसँ नीक काज करी आ हमरा जकरासँ प्रतियोगिता अइ तकरासँ आगाँ निकली, नीक काज कऽ कऽ, ई नहि जे ओकर टाँग खींचकऽ ओकरा पछा करी। से
1: मतलब वही पैर खींचना हुआ कि आप तो उसको खींचने में अपना एनर्जी, उसका तो हो ही रहा है पर उसको खींचने में आप अपना भी लॉस।
0: हाँ, से नहीं करी,
1: ये नहीं करना चाहिए हमें।
0: जहिना ओ अहाँके प्रतिद्वंदी जे छथि से आगाँ बढ़ि रहला है, तऽ अहूँ अपन आगाँ बढ़ू ने, अहूँ आगाँ बढ़ि कऽ जे छै से अहूँ ओहि हुनकर सब जे अगर प्रतियोगिते करै छी तऽ हुनकासँ आगाँ बढ़ निकलू आ नहि कि ओहिसँ पाछा पाछा अहाँ खेलैत रहब, से नहि। आओर ओना जीवनमे चैन सुखचैन जे छै से बहुत महत्वपूर्ण छै, अगर अहाँ सुखचैन छी तऽ जिंदगी अहाँके सुखमय, स्वास्थ्य अहाँके नीक रहत, आ नहि तऽ चिंतासँ चतुराई घटे, दुखसँ घटे शरीर, तऽ ई बात जे कहल छै से कोनो आर्ष वचन जे पूर्ण कोनो बात जे सुविचार अहाँ रखै छी से बड़ा ठोक बजाकऽ जे छै से लोक रखने छथि, जे सिद्ध पुरुष सब भेल छथि, जे महापुरुष भेल छथि, से ओहि बात सब पर मे बहुत गंभीरतापूर्वक अध्ययन कऽ कऽ, बहुत गंभीरतापूर्वक सोचि विचारि कऽ तखन कोनो वाक्यके लिखने छथि। आ ओ वाक्य कहिया लिखायल हैत, नहि लिखायल हैत, ओ आइ तक जे छै से लगैत रहैया जे हमरे सभक लेल लिखल गेलै। तऽ ओहि सब वाक्य

किछु ने किछु प्रमाणिकता छै आओर ओहिपर मे ध्यान देबाक चाही आओर सब गोटाके चिंतन मनन करबाक चाही। कुल मिलाकऽ कहबाक तात्पर्य इएह अइ जे खुश रही आओर अपनो खुश रही, दोसरोके खुश राखी आ एहिसँ जे छै से परिवारके सङ्ग समाज खुशमय रहत कि नहि। तऽ जहन एतेक खुशहालीके गप कऽ रहलहुँ हँ ताहिमे गीत नाद नहि हुए तऽ ओहो ठीक नहि छै, तऽ सबगोटा खुशीके सागरमे उबडुब करू आओर सुनू सुन्दर सनक ई फिल्म सङ्गीत।

0: मोहब्बत की है तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गीत सुन लो। और आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक समय जे अब लग जा रहा है, तो आजुक कार्यक्रम सब मणिकांत के
1: और मनोज को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार मिथिला।

नमस्कार मिथिला। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि, ऊर्जा आबे वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतै।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी।
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तो इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन एक
3: आ मनुख लेल त बुझो अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
7: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
8: मेरे में 231.5 अर्थात 1296 kHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब कुछ क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

0: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता
1: नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी

0: नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
1: MMTPA LNG टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही

0: मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री

0: मंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर्राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jaishankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayyed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Shri Hasak Phuangketkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet

0: newspaper also informed decision on Kerala CM will be announced today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. US President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war on trade. The Times of India writes, dealmaker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu, in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and NewsOneAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी, पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू प्याज फल सब्जियों गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयत सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उमूर खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारिजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकत दार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे जिसका मौजू ब्रिक्स @20 इस्तेहकाम इख्तिरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में इस्लाहात के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड UCC बिल पेश करेगी। वजीर आला हिमंता बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते

0: हार।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाय होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुल्क में कोयले से गैस बनाने से मुतालिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने से मुतालिक खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, मोदी सरकार ने कोयले पर मबनी गैस की पैदावार के मंसूबे को मंजूरी दी, खुद किफालत में मदद मिलेगी। CBSE 12वीं जमात के नतायज जारी होने से मुतालिक खबर सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने इस हवाले से सुर्खी लगाई है। CBSE की जानिब से जारी करदा आरादोशुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पर 85.20 तलबा कामयाब हुए, लड़कियां आगे रहीं। तमिलनाडु में 144 मेंबरान के साथ विजय ने अक्सरियत साबित की, इसी अखबार ने इस खबर को भी अव्वलियत के साथ पहले सफ़े पर शाया किया है। सोने और चांदी की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी में 15% इजाफे किए जाने से मुतालिक खबर अहमियत के साथ अखबारात में शाया की गई है। इस हवाले से रोजनामा प्रताप की सुर्खी है कि हुकूमत दीगर अशिया की दरामद कम करके गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल को महदूद करना चाहती है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। CBI के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी दी गई है। और IPL क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी IPL सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट उपचुनाव की मतगणना जारी। जदयू के कन्हैया प्रसाद और राजद के सोनू राय समेत 6 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। और पटना, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 या अगले आदेश तक खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंधित से निषिद्ध कर दिया गया है। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL तथा TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना आज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आरा स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर जदयू के कन्हैया प्रसाद तथा राजद के सोनू राय के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इसके अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। 12 मई को मतदान कराया गया था। गौरतलब है कि यह सीट पूर्व MLC राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई है। राज्य सरकार महिलाओं को इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन खरीदने पर प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में भी महिलाओं को अनुदान दिया जाएगा। साथ ही सभी गाड़ियों के निबंधन दर में 50% की राहत दी जाएगी।
1: परिवहन विभाग का एजेंडा था, जिसमें मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कुल 110 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन निधि नीति 2026 की स्वीकृति दी गई अगले एजेंडा में।
0: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्रियों ने भी अपने काफिले के आकार में कमी की है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रत्येक शुक्रवार को सार्वजनिक वाहनों या ई वाहनों के जरिए कार्यालय पहुंचने की अपील की है। तेल कंपनियां राज्य में अब 10,00,000 से अधिक आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस संबंध में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं के निबंधित मोबाइल पर यह संदेश भेजा जा रहा है। बिहार राज्य LPG वितरक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे संदेश में 7 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया मांगी गई है। यदि उपभोक्ता आपत्ति नहीं जताता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक

0: के लिए होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दरभंगा जिले में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही वे DMCH में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। मुख्यमंत्री के दरभंगा आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को 30 मई तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता ने पटना में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि गरीब परिवारों के वृद्ध, निःशक्त, विधवा और कुष्ठ पीड़ित लोगों को विभिन्न योजना का लाभ लेने के लिए यह प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इससे योजनाओं से वंचित पात्र लाभुकों को जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और गणना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि 31 मई तक चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत प्रगणक नागरिकों से 33 प्रकार के सवालों की जानकारी लेंगे। श्रीमती रंजीता ने लोगों से जनगणना के नाम पर साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील भी की है।
1: कोई भी जनगणना कर्मी आपके घर आते हैं तो वो आपसे वित्तीय जानकारी या किसी प्रकार का दस्तावेज उसकी मांग नहीं करते। तो अगर कोई भी इस प्रकार का मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए संपर्क करता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है और साइबर हेल्पलाइन 1930 उस पर संपर्क कर सकते हैं या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1855 उस पर संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं या जिला प्रशासन स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में इसकी सकते हैं।
0: जनगणना निदेशक की आकाशवाणी समाचार के साथ इस पूरी बातचीत को प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से प्रसारित सामयिक चर्चा के तहत सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम शनिवार शाम 7:52 से प्रसारित किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पटना, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत शाम 7:00 से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। किशनगंज के जिलाधिकारी विशाल राज ने लोगों से ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में सहयोग की अपील की है।
5: शाम को 7:00 सायरन बजने के साथ साथ बिजली को कट कर दिया जाएगा, तो सभी नागरिकों से अपील है कि इस ब्लैकआउट की एक्सरसाइज में आप लोग संजीदगी से इसमें हिस्सेदारी लें और लाइट कट होने के बाद ब्लैकआउट के दौरान पूरे शहर में अंधेरा होना चाहिए, उस उद्देश्य की पूर्ति आप लोग सभी लोग मिलकर करें। प्रयास है ये, अभ्यास है ये, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है।

0: मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार सहित 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
1: दिनांक 14 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मई महीने में प्रदेश में अब तक सामान्य से 170% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस बीच प्रदेश के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान 38.8 और पटना का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 3 जून को पटना और अन्य जिलों में चयनित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में होगा। असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटी की 173 रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्रा अमृता ने कुछ देर के लिए पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभाई। बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने अमृता को यह अवसर दिया। इस दौरान अमृता ने पुलिस पदाधिकारी बनकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। भागलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जनगणना कार्य में लापरवाही के मामले में 118 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इधर जिले में घरेलू गैस आपूर्ति में अनियमितताओं को लेकर छापेमारी अभियान के दौरान 4 गैस एजेंसियों के गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने शिवहर जिला कृषि कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक विजेंद्र कुमार गिरी को 8,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी एक महिला से खाद दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर रिश्वत के रूप में रूपये ले रहा था। मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम ने स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन फाल्केनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। शम्स ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए यह पदक हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने अक्टूबर में जापान में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा गेम्स की तीनों स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई। इसी खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 प्रस्ताव किए गए स्वीकृत। कैबिनेट का फैसला, 2030 तक बैटरी चालित वाहनों की 30% हिस्सेदारी करने की योजना। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, भाषाओं की खामोशी से बौद्धिक विरासत ही नहीं जिंदगी भी खतरे में। बुजुर्गों से संवाद उनके किस्से देंगे नया जीवन। प्रभात खबर सीबीएसई 12वीं के नतीजे से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखता है, साइंस में पटना के रोहन, आर्ट्स में अतुल और कॉमर्स में गया की माही कुमारी स्टेट टॉपर। आज अखबार ने लिखा है, बिहार के 8 जिलों में बनेंगे नए हाईटेक थाना भवन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट उपचुनाव की मतगणना जारी। जदयू के कन्हैया प्रसाद और राजद के सोनू राय समेत 6 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक चरपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को प्रति वाहन 1,00,000 रुपए का अनुदान देगी। और पटना, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में आज होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आब वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
5: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
3: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
4: तुम नाचो रस बरसी।
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: लहजे में कहा, जी मुझे आपसे बहुत सारी ज़रूरी बातें करनी है। मैं चूंकि अपने घर में तमाम बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारियां भी सबसे ज़्यादा हैं, और आज के बाद आप भी मेरे साथ इन तमाम जिम्मेदारियों में शरीक हो चुकी हैं। बड़े होने के नाते अम्मी अब्बू ने यह कमरा, जो इस घर का सबसे बड़ा और रोशन कमरा है, हमें दिया है। इससे पहले ये कमरा मेरे अम्मी अब्बू के पास था, और उससे पहले मेरे दादा दादी के पास। अब्बू की शादी पर यह कमरा अब्बू को दिया गया था, और अब ये हमारे हिस्सा में आया है। जिस तरह घर वालों ने हमें बड़ा समझकर ये इज्जत दी है, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम भी उनकी इस उम्मीद पर पूरा उतरें। मेरे माँ बाप ने अपनी बरसों की रवायत को कायम रखते हुए हम पर इत्मीनान किया है। इस कमरे के दाखिली दरवाजे के अलावा जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, वो दूसरे कमरे में खुलता है, और आज तक ये दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं हुआ, ना उस तरफ से ना इस तरफ से। और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इस बात का ख़ास ख्याल रखें। मैंने मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा, शायद मेरे चेहरे पर गोमगो की कैफियत नुमाया हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझे दोबारा मुखातिब करते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, हमारे घर में तहजीब और आदाब का बहुत ख्याल रखा जाता है, आपकी इजाज़त के बग़ैर कोई भी कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और आंखें झुका दी। उसके बाद दिन, हफ्तों, महीनों और सालों में बदलने लगे, मगर पहली रात से अब तक के सफ़र में दरवाज़ा कभी किसी तरफ से बंद ना हुआ। गर्मी, सर्दी, खजां या बहार, कितनी मौसम आए गुजर गए, मगर घर की रवायत अब भी वैसे ही कायम थी जैसे कई पुश्तों से चली आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने करवट ली, बूढ़े और नर्म लहजों वाले लोग मनु मिट्टी तले जा सोए, और नए ज़माने के अंदाज कुछ अजीब व गरीब सूरत अख्तियार करने लगे। मगर हमें तो अपनी तरबियत पर पूरा इत्मीनान और भरोसा था। हमारे बच्चे अब हमारे सरों से ऊपर हो चले थे। आखिर वो घड़ी भी आ पहुंची जब वक्त ने अपने आप को फिर एक बार दोहराया, और हमारे घर के आंगन में बड़ी बहू ने कदम रखा। रसूमात वगैरह से फारिग होने पर बहू को उसी कमरे में पहुंचा दिया गया जो आज से पहले तक मेरी आरामगाह थी, मगर रवायत के मुताबिक अब उस पर बड़ी बहू का हक था। बराबर वाला कमरा अब मेरे इस्तेमाल के लिए हो गया था। मैं भी तमाम मेहमानों से फारिग होने के बाद खुदा का शुक्र अदा करती हुई अपने नए कमरे में दाखिल हुई। थकन जिस्म को चूर चूर कर चुकी थी, मगर खुशी के एहसास ने अब तक उसे संभाला हुआ था। सोफे पर गिरने के अंदाज से बैठते हुए नज़र दरमियानी दरवाजे पर जा ठहरी, जिस पर आज भी मुझे मान था कि वो ना पहले कभी बंद हुआ ना अब बंद होगा। मगर ये क्या, मैं हैरत से आँखें फाड़ फाड़ कर दरवाजे को देख रही थी, क्योंकि आज दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद कर दिया गया था।
1: सामीन, आप महजूद हो रहे थे अफसाना से, मौजूद था तहजीब का दरवाज़ा। अफसाना निगार थे जनाब निसार अहमद सिद्दीकी। अब चलते हैं शेर व शायरी की जानिब, और आज कलाम शायर के तहत अपना कलाम लेकर हाजिर खिदमत हैं जनाब नसर आलम, आपकी समातों के हवाले।
2: बच्चों को तालीम दिलाने की खातिर, बच्चों को तालीम दिलाने की खातिर, बच्चों को तालीम दिलाने की खातिर, बच्चों को तालीम दिलाने की खातिर,

0: आओ बच्चों तुमको खूब पढ़ाए हम, तुम भी बन जाओ महबूब पढ़ाए हम।
1: चौथा कथा आपकी समाज के हवाले।
0: तालीम सीधे रास्ते पे ले।

मेरे बच्चों मेरी दस्तार गिरा मत देना, जगह साई मेरी दुनिया में करा मत देना, जगह साई मेरी दुनिया में करा मत देना। और शेर देखिए, मैंने दामन को अभी तक है बचाए रखा, मैंने दामन को अभी तक

मत देना। और ये शेर भी देख लेंगे, आप महफूज हैं पिंजरे में अगर रखा है, आप महफूज हैं पिंजरे

एना अब तलक है अगर हुजरे में हया की चादर, अब तलक है अगर हुजरे में हया की चादर।

0: जगह साई मेरी दुनिया में करामत देना।
1: कलाम शायर के तहत अपना कलाम पेश कर रहे थे जनाब नसर आलम। अब बज़्म मौसीकी में पेश खिदमत है ये उमदा सी गज़ल, आवाज़ है जगजीत सिंह और चतरा सिंह की, मुलाहिजा हो।

मिनी वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

यह आवाज़ थी किशोर कुमार की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में। गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अगला गीत फिल्म तपस्या से, आवाजें किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की, गीत रचना MG हसमत की और संगीत रचना रविंद्र जैन की।

यह आवाज़ थी किशोर कुमार की और आरती मुखर्जी की फिल्म तपस्या में। अगला गीत महेंद्र कपूर, मन्ना डे और श्यामा चित्तर की आवाज़ों में फिल्म शोर से। गीतकार हैं रविंद्र जैन और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

ये आवाजें थीं किशोर कुमार और आशा भोसले की फिल्म जुदाई में। आइए आप सुनते हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में फिल्म आई मिलन की रात का ये गीत।

0: आई मिलन की रात। फिल्म के इस गीत को भी आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौंडवाल की आवाजों में। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म यादगार में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।
1: राजकीय बालिका विद्यालय में मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
2: जिस पथ पे चला उस पथ

यादगार फिल्म के इस गीत को भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार थे निवर और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म कभी कभी का ये गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई है खयाम ने।

आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर को फिल्म सरस्वती चंद्र में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

ये आवाज़ें थी मुकेश और लता मंगेशकर की फिल्म सरस्वती चंद्र में। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म बैराग का ये गीत।

बैराग फिल्म के इस गीत को अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। आइए आप सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और नंदा को फिल्म जब जब फूल खिले में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

ये आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और नंदा की फिल्म जब जब फूल खिले में। और अब चलते चलते आइए आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मुकेश और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। कुछ ही पल में हमारा अगला प्रसारण।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत। आज हम इसमें सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का गायन।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी वाला सामान किनना,
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
3: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
4: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत है, फूल प्रकृति में घोराए लगत है, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा

0: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
1: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
1: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
1: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
1: जी श्रोताओं, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
1: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
1: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी,
1: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
1: इसके मुख्य लक्षण है चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
1: श्रोताओं, ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
1: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
1: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें, लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
1: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें, उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओं, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा,

0: फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
0: जी।
1: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के टर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी।
0: जी,
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
6: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
1: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की

0: की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है

0: चीन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
1: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
2: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
3: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
2: आजा खेलते हैं।
3: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
4: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
3: अच्छा वो क्या?
4: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
3: हाँ
5: दूसरा क्या?
4: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
2: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था, और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत

0: धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल। बिल्कुल।
3: देखो चुन्नी लाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ। आ गया। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।
3: उधर से दुश्मन आ रहे हैं।

0: अरे नहीं, यही रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूँ।
1: ठीक है साहब।
2: बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टैन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
3: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
3: वेरी गुड, वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू।
2: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं दोपहर के 12 और ये समय होता है खास उन श्रोताओं के लिए जिन्हें पसंद है नए फिल्मी गीत। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का नए फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म फाइटर के इस गीत के साथ, जिसे गाया है विशाल शेखर, बीपराग और शिल्पा राव ने। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत निर्देशन विशाल शेखर का।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको जुबिन नौटियाल की आवाज में। गीत और संगीत अजय सिन्हा के हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म वेलकम वेडिंग से जावेद अली की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और धुन तैयार किया है राज आशु ने।

अभी आप सुन रहे हैं सचिन जिगर, जोनिता गांधी और शाश्वत सिंह की आवाज में फिल्म आंख मिचौली का ये गीत, जिसे लिखा है प्रिया सरैया ने, संगीत निर्देशन सचिन और जिगर की जोड़ी का।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको अरुण देव यादव के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं अनुराग साइकिया ने, संगीत माफ कीजिएगा, गीत के बोल लिखे हैं जूनो ने और संगीत निर्देशन अनुराग साइकिया का है और फिल्म का नाम है दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म घूमर से, दीपाक्षी कलिता और अल्तमस फरीदी की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने और संगीत निर्देशन अमित त्रिवेदी का है।

ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म दे दे प्यार दे टू से आवाज श्रेया घोषाल की। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने, संगीत निर्देशन पायल देव और आदित्य देव का।

श्रेया घोषाल की गायक फिल्म दे दे प्यार दे टू के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कुछ और फिल्म गीत लेकर हम आएंगे आपके लिए इस सभा में दोपहर 1:15 पर और 2:30 पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आप हमारे कार्यक्रमों को मीडियम वेव के अलावा अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से। कहीं भी कभी भी अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप। और इस समय हो रहा है श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का, तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम नारी संसार।

स्वागत है आप सभी श्रोता बहनों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी संसार में। नमस्कार बहनों, आज की इस अंक में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो सखी प्रेरणा। बहनों, आज फिर से होगी कार्यक्रम में ढेरों सारी बातें, साथ ही आपको सुनवाएंगे प्यारे प्यारे फिल्मी गीते। हर दिन की तरह आपको वार्ता भी सुनवाएंगे, पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। डिजिटल साक्षरता वे क्षमताएं हैं जो एक सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इस दौर में भारतीय नारी न केवल अपनी पहचान बना रही है, बल्कि हर क्षेत्र में नेतृत्व में भी कर रही है। वह तकनीकी का उपयोग करके अपनी शिक्षा, कैरियर और व्यक्तिगत विकास को नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं। डिजिटल युग में महिलाएं खुद को सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली बनाया है। यहाँ तक कि महिलाओं को डिजिटल युग उनके समय की बचत कर जीवन को और अधिक सरल भी बना रहा है। डिजिटल युग में महिलाएं खुद को अपडेट करके अपने समय का बेहतरीन प्रबंधन और सदुपयोग कर रहे हैं। अपने रुचि के अनुसार कौशल विकास, नई स्किल सीखने के साथ साथ ही वे, अगर उनके पास जो समय बचा है, वे अपनी मानसिक शांति के लिए भी दे सकती हैं, जिससे वे स्वस्थ रहेंगी और तन मन हमेशा ऊर्जा से भरा रहेगा। बहनों, डिजिटल कौशल सीखकर अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ तालमेल बिठाकर आप सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। घर बैठे व्यापार फ्रीलांसिंग शुरू कर सकती हैं। घर से पर्सनल आप अपने जो भी सेविंग रखे हैं उसके जरिए, या बैंक लोन, सरकारी योजना, फ्रीलांसिंग ऐप पर अपनी स्किल जैसे टाइपिंग, ग्राफिक डिजाइनर और बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं। बहनों, ये सब से जुड़ने से पहले सबसे पहले आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, और समय निकालने के लिए आपको ऑनलाइन डिजिटल जो काम है वो करना पड़ेगा। बहनों, अब बहुत सारी सुविधा हो चुकी है, घर के काम बहुत आसान हो गए हैं। अगर हम टाइम टेबल के अनुसार काम करते हैं तो काम समय पर हो जाते हैं, तभी तो आप नए स्किल भी सीख पाएंगे। गृहिणी के लिए समय बचाना और नए कौशल सीखने के लिए आपको घरेलू कामों को योजना बनाकर तैयार करना होगा। सुबह और शाम के काम के लिए अलग अलग समय तय करें, ताकि आप समय पर सभी काम कर सके। स्मार्ट पेमेंट कर सकते हैं, बिजली का बिल हो गया, स्कूल फीस हो गया, या कोई अन्य भुगतान है, वे गूगल पे, एटीएम जैसे ऐप हैं उसके जरिए आप कर सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार इस बीच में अगर आपको समय मिलता है, और समय जरूर मिलेगा अगर हम महिलाएं ठान लेते हैं कि काम को किस प्रकार से करना है, तो समय हमको जरूर मिलता है। और इस समय में आपके अंदर जो भी रुचि है, जिस चीज़ में आप अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई काम को सीखना चाहते हैं, उस चीज़ को आप सीख सकते हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार कोई काम चुनें। यदि आपको डिजाइनिंग पसंद है तो कैनवा सीखें, अगर लिखने का शौक़ है तो कंटेंट राइटिंग सीखें, या अगर आप चाहते हैं डांसिंग क्लास करना तो डांस क्लास भी कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आप टीचिंग भी कर सकते हैं, कुकिंग का काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो महिलाएँ घर बैठे कर सकती हैं। इसमें आप उद्यमिता, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में महिलाएं विभिन्न कौशल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहनों, सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। यह ग्रामीण आबादी विशेषकर महिलाओं को डिजिटल साक्षरता बनाने का भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। स्वयं और स्वयं प्रभा, इसमें शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिलाओं और लड़कियों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करते हैं। यूनिसेफ की लड़कियों के लिए डिजिटल समानता पहल और लड़कियों को तकनीकी कौशल जैसे कोडिंग, सरकार महिलाओं को सिखा रही है। ऐसे कई

कार्यक्रम के माध्यम से सरकार महिलाओं को न केवल डिजिटल रूप से साक्षर बना रही है बल्कि उन्हें एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से सक्रिय में भागीदारी भी बन रहे हैं। बहनों, डिजिटल साक्षरता न केवल आपको आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि आर्थिक रूप से आपको इंडिपेंडेंट भी बनाती है। इस दौर में बहनों, हर व्यक्ति, हर महिला के पास स्मार्टफोन तो होते ही हैं। हमें इसे सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं समझना चाहिए बल्कि ज्ञान, कौशल, सुरक्षा, अवसर और आत्मनिर्भरता का भी साधन समझना चाहिए। तो बहनों, आप अपनी रुचि के अनुसार कोई एक स्किल पर फोकस करें और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। जल्द ही आप स्किल सीखकर अपनी आत्मनिर्भरताओं को बना सकते हैं। डिजिटल युग में अपनी पहचान बनाने के साथ ही सावधानी को भी जरूर अपनाएं। डिजिटल में जब भी आप काम शुरू करें तो सतर्कता अपनाकर ही इसका इस्तेमाल करें। तो बहनों, आज हम आपसे बातें किए कि डिजिटल युग में महिलाएं अपने रुचि के अनुसार कोई भी काम कर सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो इन्हें जरूर करें, खुद भी करें, आस पड़ोस के महिलाएं जो हैं उन्हें भी समझाएं, और आप अगर कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उन्हें भी इसकी भागीदारी बनाएं। बहनों, इन्हीं बातों के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: बहनों, अंतराल की बात फिर से स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम नाड़ी संसार में। बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत। विषय है परिवार का महत्व। वार्ताकार है आरती कुमारी।

दोस्तों, आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी आरती। श्रोताओं, परिवार जीवन का एक अहम हिस्सा होता है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता है। परिवार हमें सिखाता है कि हम कैसे दूसरों के साथ संबंध बना

0: सकते हैं और उन्हें निभा सकते हैं। ये वह जगह है जहां हम अपने सबसे बुरे समय में भी प्यार और समर्थन पाते हैं। परिवार के साथ समय बिताना हमें जीवन के सही मूल्यों का एहसास कराता है। परिवार हमें हमारी जड़ों से जुड़े रखता है और हमें अपनी पहचान को मजबूत करने में मदद करता है। परिवार बिना जीवन जीना असंभव होता है। परिवार इंसान से लेकर पशु पक्षियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये वो पवित्र बंधन है जो हमें प्यार स्नेह सुरक्षा प्रदान करता है। कहते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता और माँ के आंचल से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदारी नहीं, बहन से अच्छा कोई शुभचिंतक नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है या मुश्किल है। एक परिवार बच्चे के चरित्र निर्माण से लेकर व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, उसी से उसकी पहचान होती है और परिवार से ही अच्छे बुरे लक्षण सीखता है। परिवार सभी लोगों को जोड़े रखता है और दुख सुख में सभी एक दूसरे का साथ देते।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: बहनों, अभी आप सुन रहे थे एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत परिवार का महत्व। वार्ताकार थी आरती कुमारी। बहनों, इसी के साथ बढ़ती हूँ अपनी चर्चा की ओर। बहनों, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और जैसे जैसे बदलाव आता है उसकी रफ्तार से हमारे सामने अनगिनत चुनौतियाँ भी आती हैं। बहनों, ये सच है, खुद में बदलाव लाना न केवल संभव है बल्कि यह व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए आवश्यक भी है। समय के साथ परिवर्तन, शीतलता को अपनाना हमें समाज और जीवन की प्रगति करने में मदद करता है। समय के साथ बदलाव की आवश्यकता हर महिलाओं के लिए जरूरी है क्योंकि यह उन्हें न केवल आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है बल्कि बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। स्वयं के पैर पर खड़े होने, घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज में अपनी पहचान बनाने, आधुनिक दौर में नई तकनीकी और इंटरनेट के उपयोग से जानकारी बढ़ाने, साथ ही बहनों रूढ़ी मान्यताओं को तोड़ने के लिए महिलाओं को समय के साथ खुद में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। आज भी कई महिलाएं बदलाव से डरती हैं, अपनी क्षमता को पूरी तरह पहचानती तो है लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अंदर से डर लगता है। बहनों, आप अपनी खूबियों को पहचानें, उस पर काम करें और छोटे छोटे कदमों के साथ खुद को नई चीज़ें सीखने पर और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। खुद को अपडेट करते रहें, हर दिन 30 मिनट कोशिश करें, पढ़ने या कोई स्किल जो आपको पसंद है उस पर काम करना शुरू करें। घर में ही धीरे धीरे उस चीज़ को बोलना, पढ़ना, इस तरीके से आप अपने अंदर आत्मनिर्भरता और डर को भगा पाएंगे। बहनों, आजकल डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल साक्षरता, कंटेंट राइटिंग, नेटवर्किंग जैसे बहुत से काम हो रहे हैं। अभी के समय में हर महिलाओं को कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट का सही उपयोग करना और सोशल मीडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है। बहनों, आप हर महिलाओं को घर के काम करने के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ कोई ना कोई कौशल जरूर उनके अंदर छिपी होती है। हर महिला पेंटिंग करना जानती है, सिलाई करना जानती है।

हैं। इस प्रकार बहुत सारे जो कढ़ाई बुनाई होते हैं वो करना जानती हैं, बस उसे निखारने और उभारने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन माध्यम से भी आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बस इनके लिए आप सही जानकारी को प्राप्त करें और खुद के अंदर विश्वास रखें तो हर काम को आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। बहनों, आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे प्रभावी कौशल है। अपनी रुचि के अनुसार इनमें से किसी एक को चुनकर आप स्वावलंबन की ओर बढ़ सकती हैं।

की नई कहानी को लिख सकती हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में अब बहुत सारी भीड़ बढ़ गई है। और भीड़ बढ़ने के साथ साथ हम अगर अपने अंदर टैलेंट को नहीं बढ़ाते हैं, नए स्किल को नहीं सीखते हैं, तो हम अधूरे से लगते हैं। तो अपनी अधूरापन जो है आपके अंदर में, उसे आप पूरा कर सकते हैं। बस अपने डर को निकालें, आत्मविश्वास जगाएं और अपने वर्क पर काम करें। तो बहनों, इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम में हम आगे भी और भी बातें करेंगे, लेकिन आइए क्यों ना सुनते हैं फिर से एक और गीत।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: बहनों, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आशा करती हूँ कि आपको ये संगीत पसंद आया होगा। बहनों, हम बातें कर रहे थे बदलाव का। बहनों, जीवन में बदलाव बहुत महत्व रखता है। हर समय हर घड़ी हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, यही बदलाव होता है। बदलाव कहने का मतलब है मैम कि हम सभी को हर चीज़ से हर वक्त नई नई चीज़ों को सीखने के लिए खुद को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ आजकल डिजिटल युग आ गया है। हर काम अब ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन के जरिए इंटरनेट के जरिए हम हर चीज़ को आसानी से कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब AI का ज़माना भी आ गया है, तो इस दौर में हम कहीं पीछे ना रह जाएं, इसीलिए हमें हमेशा अपडेट रहने की ज़रूरत है। हर छोटे छोटे चीज़ से हमें सीखने की ज़रूरत है। खुद भी अपडेट रहें, अपने घर परिवार में अपने बच्चों को भी अपडेट करें। हमारे बच्चे अभी बहुत पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा जानकारी है, तो अपने बच्चों से भी सीखने की कोशिश करें और उन्हें भी सिखाएं। तो बहनों, इसके द्वारा आप अपने आप को अपडेट करें और आज के युग के साथ चलें। तो बहनों, इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम से दीजिए प्रेरणा को अनुमति। नमस्कार।

0: यथा श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर

0: आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने ये बात कही। कांग्रेस विधायक वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उनके नाम की घोषणा की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 3 दिन की यात्रा पर सिक्किम पहुंच रहे हैं। श्री सिंधिया कल टेमी तारकू में सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और भालेतुंगा में स्काईवॉक परियोजना तथा गंगतोक में ऑर्किडेरियम सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि श्री गांधी पिछले 22 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में हैं और इस दौरान उन्होंने 54 यात्राएं की हैं। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यक्तिगत रूप से खर्च किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जागृटेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जागृट टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। ये फेमा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति के साथ चर्चा के लिए बेहद उत्सुक हैं। श्री जिनफिंग ने ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 1:15 पर और 2:30 पर। दोपहर 2 बजे आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। 2

बजकर 5 मिनट पर इलाकाई खबरें और दोपहर 2:10 पर आप सुनते हैं रोजगार सूचना। दोपहर समाचार का प्रसारण समय होता है 2:15 पर और आज दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। ये थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के साथ की जाती है। इसमें आप सुनेंगे कार्यक्रम तरुण मिथिला। शाम 6:10 पर आप सुनते हैं विद्यापति गीत और शाम 6:25 पर मैथिली संवाद। गांव घर के अंतर्गत जागरूक गांव आज आप सुनेंगे शाम 6:30 पर और किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम होता है खेती गृहस्थी शाम 7 बजे। जिले की हलचल के साथ प्रादेशिक समाचार का प्रसारण समय होता है शाम 7:30 पर। मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनते हैं 8:15 पर रात्रि में। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू खबरें। नौ बजकर 30 मिनट पर आनंद ले सकेंगे आप फिल्म संगीत का। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत और 10:30 पर पुनः आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी।

ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

हेमंत कुमार को साथियों के साथ अभी आप सुन रहे थे फिल्म गंगा जमुना में। इस गीत के बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने और संगीत निर्देशन थे नौशाद अली। ये गीत अभी आपने सुना देशभक्ति गीत के अंतर्गत, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और फिल्म का नाम है कोई आपसा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अलका याग्निक और उदित नारायण को सुनिए फिल्म मुझसे शादी करोगी में। गीत के बोल लिखे हैं जलीस शेरवानी ने और संगीत निर्देशन साजिद वाजिद का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार की।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको दे दें। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, ये है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे वही 9430029353। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0627222481। समय याद रखें, रविवार 17 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। और अब फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में फिल्म दस्तक का ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशन राजेश रोशन ने किया है।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म बजरंगी भाईजान से के की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं कौशल मुनीर ने और संगीत निर्देशन प्रीतम का।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यह है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 9430293530627222228। समय है रविवार 17 मई 2026 दिन के 11 बजे। और ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म साथी से। अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज में गीत को लिखा है समीर ने और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का।

अनुराधा पौडवाल और ज्वाली मुखर्जी के गाए फिल्म साथी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। श्री चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग करेंगे। श्री चौधरी ने जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की, साथ ही उन्होंने टीएमसीएच में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आरा के राजकीय पालिका विद्यालय स्थित मतगणना केंद्र पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच मतों की गिनती की जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार प्रथम वरीयता में किसी भी

0: उम्मीदवार को अस्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका, जिसके बाद द्वितीय वरीयता की मतों की गिनती की जा रही है। इस सीट के लिए 12 मई को मतदान हुआ था। गौरतलब है कि यह सीट पूर्व एमएलसी राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई है। पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉकड्रिल शाम 7 बजे से 7:15 तक आयोजित होगा। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। प्रशासन ने लोगों से मॉकड्रिल में सहयोग की अपील की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तेल कंपनियां अब 10 लाख से अधिक आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं देगी। इस संबंध में IOCL, BPCL और HPCL कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं के निबंधित मोबाइल पर संदेश भेजा जा रहा है। बिहार राज्य LPG वितरक संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों की ओर से भेजे जा रहे संदेश में 7 दिनों के अंदर प्रतिक्रिया मांगी गई है। यदि उपभोक्ता आपत्ति नहीं जताता है तो इन सभी की गैस सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। यह फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार सहित 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मई महीने में अब तक सामान्य से 170% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर से जिला आसूचना इकाई और एसटीएफ की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के मोहम्मदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के चेवारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सफी ईमान और उसके भाई को 3 वर्ष पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है। अररिया सदर अस्पताल में नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनोद तुहन की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल परिसर में LED डिस्प्ले और कूलर युक्त RO लगाने सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। जनाब चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डा की हिफाजत सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को मुंतकिल किए जाने के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय तैयारा हादसा अथॉरिटी के अफसरान के साथ होने वाली मीटिंग में दरभंगा हवाई अड्डे को बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे की शक्ल में फ़रोग देने का मुतालबा करेंगे। जनाब चौधरी ने ज़िला के शोभन में एम्स के तामीराती काम की रफ़्तार का भी जायज़ा लिया। साथ ही उन्होंने DMCH में चल रहे काम की रफ़्तार के पेश नज़र भी अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। बिहार कानून साज काउंसिल की भोजपुर और बक्सर मकामी अथॉरिटी सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती जारी है। हमारी नुमाइंदा ने बताया कि आरा के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वाक़े रायशुमारी मरकज़ पर सख्त हिफाजत

0: इधर आइए, इधर
1: इधर।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। भारतीय सेना में सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पदों पर ईमेल के जरिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल पद 190 हैं। इस आवेदन को करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तक है। आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जारी की गई है। कुल पद 1230 हैं। ये आवेदन 31 मई 2026 तक किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। आयोग की वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in। दक्षिण पूर्व रेलवे रायपुर में अप्रेंटिस की रिक्तियां हैं। इसके तहत वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट समेत अन्य ट्रेड में भर्तियां होंगी। कुल पद 1644 हैं।

ये आवेदन 4 जून 2026 तक किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से की जाएंगी। वेबसाइट है secr.indianrailways.gov.in। यहां जाकर आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में हॉस्पिटल असिस्टेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। कुल पद 1200 हैं। अंतिम तिथि 21 मई 2026। आवेदन प्रक्रिया संबंधित वेबसाइट esp.mp.gov.in पर लॉगिन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद रिक्त हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल पद 660 हैं। अंतिम तिथि 11 जून 2026 है। आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट है coalindia.in।

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर एग्जीक्यूटिव समेत अन्य पदों पर कुल पद 250 हैं। इस आवेदन को आप 24 मई 2026 तक कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया भारत पेट्रोलियम .in पर जाकर आप वेबसाइट से जानकारियां प्राप्त करके आवेदन कर सकते हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में असिस्टेंट फोरमैन एवं टेक्नीशियन के पद भरे जाएंगे। कुल पद 500 हैं। ये आवेदन 28 मई 2026 तक लिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वेबसाइट है महानदी कॉल .in। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जरूर जांच कर लें।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कुल पद 1,865 है। अंतिम तिथि 19 मई 2026 तक है। आवेदन प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट है unionbankofindia.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता बीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता

0: सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। यूडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई।

0: नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर को अभी आप सुन रहे हैं। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत निर्देशन आनंद मिलिंद का है। फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में सुनवा रहे हैं आपको फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत, जिसे लिखा है समीर अनजान ने, संगीत निर्देशन जतिन ललित का।

शंकर महादेवन और अलका याग्निक का गाया हुआ गीत सुनवा रहे हैं आपको। फिल्म नायक से गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन AR रहमान का।

अलका याग्निक और उदित नारायण को भी आप सुन रहे हैं फिल्म धड़कन में। गीत के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण ने किया है।

हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म दिल एक मंदिर के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं विभा झा के गाए इस देवी गीत के साथ।

लोक गीतों का आनंद ले रहे हैं आप इस समय आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए.के. गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर होंगे 9430029353। हमारा दूसरा नंबर है 0627222481। समय याद रखें, रविवार 17 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

पूनम कुमारी के गाए इस महेशवाणी के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती। भाई, सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर, या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं।
1: जी।
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: और जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही।
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ, पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ करती थी।
0: दिल से
1: और
0: जुड़ जाते थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करें और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: होती। बिल्कुल सही कहा। और एक हमारे सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए, अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं अच्छा सा।
1: चलिए,
2: बाकी रह गए दोस्ती यारी रद्द हो गई, प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है, छीछी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहां बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपने हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ
1: है।
0: तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं

0: तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि वहां
1: बिल्कुल
0: पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते
1: मिल ही
0: हैं।
1: सकते हैं। और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था, एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूलते थे, नहीं भूल पाते थे। पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं, तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखियों और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी
0: जी
1: डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं। आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ, तो वही चलिए सुनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहां हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, न किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पर जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
2: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई ज़रूरी चीज़ है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किश्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती हैं ना तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना। अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है जुर्माना भी हो सकता है सजा भी हो सकती है। उन चीज़ों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है उतनी आमदनी आपको रखनी या तो फिर किश्तों से ही बचना है।
2: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता ना लगता क्या है अरे सिर्फ 2,000 या 3,000 की तो किश्त है तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2,000 या 3,000 दिख रहा है ना महीने का सिर्फ उतना ही दिखता है, इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है प्रोसेसिंग फीस

0: में लग जाती है, या
1: हाँ
0: इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई, ये 2 या 3 हज़ार की नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हज़ार तक भी चली
1: और वो
0: जाती है।
1: जो 20 हज़ार की चीज़ आपको ख़रीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30 हज़ार या 35 हज़ार तक की वो पड़ जाए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो इसीलिए आप किश्तों में ख़रीदने का जो एक कहते हैं ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में ख़रीदारी अच्छी है, चूँकि आपने आपके पास ज़्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में ख़रीदने को अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि ये नकद ख़रीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं। मासिक भुगतान का ये आइडिया ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। हाँ, आप हर महीने EMI दे सकते हैं, तो वही चीज़ें आप ख़रीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफ़ी फिर ब्याज बढ़ने की उसमें महंगी पड़ जाती है, और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं। किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं, और पैसा भी डूब
0: बिल्कुल
1: जाता है।
0: बिल्कुल, ये सही कहा। देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या हैं, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई, किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान हैं। जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी
1: जी
0: हो सकती है, GST कहाँ लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किस्त तो हमें जानी ही है। फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे EMI चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार, कि किस्त
1: जी
0: बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है।
1: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर ख़रीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज़्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। इसलिए किश्तों पर ख़रीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। और मेरे हिसाब से तो ये ख़रीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है।
0: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप EMI के पक्ष में हैं तो 10% का नियम अपनाना चाहिए। वो क्या है कि आप सभी EMI का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ EMI में जाना चाहिए। सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर ज़रूरी चीज़ें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीज़ों से खरीदने से बच सकते हैं।
1: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। सुनवा
0: सुनिए,
1: दें?
0: बिल्कुल सुनवाइए।

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं गर्मी बहुत है।
1: सही
0: और
1: बात
0: ऐसी
1: है,
0: गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहाँ उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है, लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है।
0: बिल्कुल दीपा, और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है। आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं, और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं। और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है, हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है। और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है।
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं। शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं।
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं।
0: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज़्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आराम

0: दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है। और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है। जैसे प्याज लहसुन ज़्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए, गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए, त्वचा पर पसीने को ज़्यादा जमा ना होने दीजिए, और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले ढाले आरामदायक कपड़े पहने, शरीर के जो अंतरंग हिस्से हैं उनकी साफ सफाई अच्छे तरह से रखिए, कॉफ़ी या चाय इनका सेवन थोड़ा कम करिए, धूम्रपान का सेवन कम करिए, क्योंकि ये भी शरीर की गंध को बढ़ाता है, और बिना धुले हुए कपड़े कभी ना पहने। इस
0: बिल्कुल, और यही सारी बातें हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बातें लिखी हैं कि लिनन या सूती ढीले कपड़े पहने ताकि त्वचा में हवा आती जाती रहे। नायलॉन या पॉलिस्टर जैसे कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते इसलिए बदबू बढ़ाते हैं। और एक बार कपड़े, जैसे अभी आपने बताया कि एक बार कपड़े जो पहन लिए वो बगैर धोए उसे दोबारा ना
1: जी
0: पहने, और सारी बातें उन्होंने यही बताई हैं कि प्यास से युक्त भोजन का इस्तेमाल कम करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिक बाहर जाते हैं, शरीर ठंडा रहता है।
1: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफ़ेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफ़ेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहाँ जो प्रभावी हिस्सा है, जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आती है पसीने में, वहाँ रगड़ कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबाल कर, नींबू का रस निचोड़ कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचल कर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको
1: जी
0: पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
1: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं सखी सहेलियों से इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आपके चहेते फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ हाजिर हूँ मैं शिफाली कपूर। साथियों, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हों, और उन्हीं खूबसूरत पलों को सजाने के लिए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहां फोन के जरिए आपसे होगी बातचीत और साथ होंगे आपके पसंदीदा गाने। साथियों, कुछ गीत मुस्कान बन जाते हैं, कुछ धुनें यादों का कारवा ले आती हैं, और कुछ फरमाइशें दिल से सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातों और गीतों का सिलसिला। लेते हैं पहला कॉल। सुन रहे हैं ना, फोन की घंटी बज रही है, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं? हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैं खुश नसीब हूँ, मुझको किसी का प्यार मिला।
0: आहा, क्या बात है, अपना नाम तो बताएं।
1: प्यार का ही एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। मैं प्रेम कुमार गौतम बोल रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: मेरा नाम ही है मोहब्बत प्यार प्रेम।
0: वैसे कहते हैं ना कि प्यार बांटते चलो, प्यार जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता है ना?
1: जी। तो मेरे आगे दो शब्द लगे हैं, तो प्रेम, दूसरा गौतम, और गौतम बुद्ध, दोनों ने ही प्रेम का संदेश दिया।
0: क्या बात है। तो आज आप क्या संदेश दे रहे हैं और किस शहर से बात कर रहे हैं, जरा ये भी बता दें।
1: मैं झांसी से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा जी।
1: पूर्व लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल।
1: और गर्व करते हैं।
0: बिल्कुल गर्व है।
1: आपको भी गर्व होगा।
0: बिल्कुल गर्व है जी, बिल्कुल गर्व है। अपने बारे में भी कुछ बताएं प्रेम जी, आप क्या करते हैं?
1: मैं शब्दों की साधना करता हूं।

0: राइटर हूँ, लिखता हूँ।
1: क्या बात है।
0: कविता से मेरे आत्मिक जुड़ाव है, मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
1: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
0: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
1: अच्छा, तो चार लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
0: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है दो मिनट का मौन है। आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा, आओ मित्र दो मिनट का मौन रखें।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया, तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
0: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
1: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
0: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहा है, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मरिया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हालचाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त 37 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
0: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
1: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
0: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
1: टीम का नाम है महबूब की मेहदी, और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहां से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश, छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा।
1: तो यह से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास से बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या बारह महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा ये बताएं कि आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली लोग रहती है तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी बहन जी, नमस्कार
0: नमस्ते जी। आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम, डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जात?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हाल चाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस तो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे,

0: हेलो, फरमाइश।
1: सिर्फ अली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ। मैम
0: भाई, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो विविध भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाटकोपर में रहता था, तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाटकोपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी, मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी, 20 साल से ऊपर हो गया होगा, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है, हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो इतना जो कि बचपन से सुन रहा हूँ, और बहुत अच्छा लगता आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, फेमस है, उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो, रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है, कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी रहे। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ, नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं, वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं, अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल, अलिफ जवर आल, अलिफ जवर ए, अलिफ तो सो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।
2: अलिफ जबरा अलिफ जरे अलिफ पेशो अज

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार शिफाली दीदी।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहा है हमसे?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: ओ साहिल भाई, क्या हालचाल हैं?
1: ठीक हो? आप सुनाइए दीदी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं। आप सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं। और अपने बारे में बताएं साहिल भाई।
1: जी मैं पश्मीना, जो कश्मीर आर्ट है ना, उसी के साथ करता हूँ दीदी।
0: शॉल वगैरह बनाते हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सारा हाथ का काम होता होगा, हाथ से ही करते होंगे आप?
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपकी अपनी शॉप है या आप कहीं जाते हैं या घर से करते हैं ये काम, कैसे करते हैं?
1: मैं घर से ही करता हूँ दीदी, ये काम बनाते हैं तो फिर उसको खुद ही बेचते हैं।
0: अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम?
1: जी बिल्कुल, लगभग 2012 से।
0: तो काफी लंबे समय से जुड़े होंगे आप विविध भारती के साथ भी?
1: जी विविध भारती के साथ तो मैं जुड़ा हूँ, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने 2 मई से प्रोग्राम शुरू किया है मन चाहे गीत।
0: जी जी जी जी
1: बिल्कुल। और आपने कुछ प्रोग्रामों में चेंजेस भी लाए, तो बहुत अच्छी लग रही है हमें वो आपकी चेंजेस।
0: अच्छा, तो आपको ये जो बदलाव हुए हैं ये पसंद आ रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: और वैसे क्या आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते हैं या कुछ खास ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें आप बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं?
1: प्रोग्राम तो मैं सभी सुनता हूँ दीदी, आज के फनकार आता है, सुरीला सफर आता है, और छाया गीत, ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपके हमें मिलते हैं पिटारा, वो हमें सभी सुनने को मिलते हैं।
0: विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है?
1: प्रोग्राम तो सभी अच्छे हैं।
0: और अब ये बताएं जरा कि आप श्रीनगर के इस समय हाल कैसे हैं, मौसम कैसा है?
1: तो इस वक्त मौसम बहुत ही अच्छा है, गर्मियां शुरू हो चुकी है, तो फिलहाल जो कुछ दिनों पहले यहां का जो तापमान था वो 31 भी हो गया।
0: अच्छा, तो आज साहिल भाई कौन सा गाना सुनवा दिया जाए आपको?
1: फिल्म का नाम है डोली, उसी का एक नगमा है आशा जी की आवाज में, आज मैं देखूं जिधर जिधर ना जाने क्यों उधर उधर।
0: भाई साहिल भाई, ये तो आपने मेरी पसंद चुरा ली। तो चलिए अपनी इस प्यारी सी बातचीत को यहीं रोक देते हैं और अब सुनते हैं आपकी पसंद का, और हमारे तमाम श्रोता होंगे उनको भी ये गाना पसंद होगा, तो हम सब सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताएं तो।
1: मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम भाई क्या हाल चाल है?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैं सबसे बड़ा फैन आकाशवाणी विविध भारती का हूँ और उसमें से सबसे अच्छे मुझे आपके कार्यक्रम लगते हैं। हेलो सहेली में आप आते हो, सखी सहेली में आप आते हो, हेलो फरमाइश में आप आते हो, तो चार चांद लग जाते हैं।
0: चलिए भाई, आपको विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आप विविध भारती से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो यूँ समझिए कि मेरी धड़कन एकदम से तेज हो चुकी है।
0: भाई ऐसा क्यों?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि विविध भारती पे कॉल लगना है ना, ऐसा होता है कि आपको मतलब सारी खुशियाँ मिल गई एक साथ में।
0: हम तो अपने सभी श्रोताओं के लिए हमेशा यही कामना करते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें। तो अब अपने बारे में बताएं प्रेम भाई, क्या करते हैं वहाँ पे?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और मोबाइल ऐप से आकाशवाणी विविध भारती और जितने भी प्रोग्राम आते हैं ना उनको सुनता हूँ मोबाइल ऐप से। और अगर हम कहीं बाहर भी जाए ना फिर भी हमें मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम आसानी से सुनने को मिल जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, विविध भारती के जो कार्यक्रम आते हैं ना उसमें से मुझे हेलो फरमाइश और हेलो सहेली, इसके अलावा पिटारा के तहत में जो आता है, पहले सेहतनामा आता था, अभी सेलुलाइट के सितारे शुरू किए हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रम आते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। और जब रात में हवा मेल आता है ना 8 बजे, उसका तो हम सबसे बड़े फ्रेंड हैं।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने तो सभी कार्यक्रमों के नाम ले दिए क्योंकि सभी कार्यक्रम आपको पसंद हैं, यानी आप तो सुबह से शाम सुनते ही सुनते हैं विविध भारती। जरा ये बताइए कि इस समय जो आप हमें कॉल कर रहे हैं खेत से कर रहे हैं क्या?
1: इस समय तो हम घर पे ही हैं, अभी गर्मी का टाइम है ना तो खेत में अभी काम कुछ भी नहीं बचा है, बस फसल निकाल के घर ले आए हैं, खेत को कुछ समय के लिए खाली कर छोड़ दिया है, तब बरसात होगी ना तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी जुलाई में।
0: अच्छा तो जरा ये बताएं कि आज कौन सा गाना सुनेंगे?

0: फिल्म का नाम है अर्पण और जानने के बोले, लिखने वाले ने लिख डाला मिलन के साथ जुदाई। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गाना काफी अच्छा लगता है
1: जी। गाना है ही अच्छा, इसका गीत संगीत दोनों बहुत अच्छा है। सुनिए अब अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती विदर्भ महाराष्ट्र से हिम्मत राज श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी, आपका पुराना श्रोता।
0: हिम्मत भाई नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या चल रहा है आजकल?
1: आजकल कुछ नहीं दीदी, काम पर था, काम पर से अभी फोन लगाया मैंने।
0: अच्छा, तो आप बताएं वहाँ पर क्या काम करते हैं अमरावती में?
1: मैं मजदूरी का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो इस समय छुट्टी लेकर आए हैं फोन लगाने के लिए?
1: हाँ दीदी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने छुट्टी ली तो वो छुट्टी जो है हो गया कि आपका काम बन गया उस छुट्टी में।
1: आपकी आवाज सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शिपाली दीदी हमारे आमने सामने बैठी है रेडियो के।
0: देखिए रेडियो ऐसा माध्यम है हिम्मत भाई कि ऐसा लगता है कि हम सब आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बताएं अमरावती के क्या हालचाल है? खूब गर्मी पड़ रही है
1: अमरावती विदर्भ में? बहुत गर्मी दीदी, इधर पारा बहुत गर्म है दीदी, 70 डिग्री सेल्सियस है दीदी, 47 है।
0: तो ये बताइए कि गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो दीदी छतरी लेके जाता हूँ साइड पर, कान को बांधता हूँ कपड़े और ठंडा पानी पीता हूँ और समय पर भोजन करता हूँ दीदी और शाम में 5 बजे घर पे आता हूँ।
0: आप जरा बताएं आज कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: पूरे जब जब जुल्फे तेरी और आशा भोसले यानी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है दीदी।
0: तो चलिए अब पहुंच रहा है अमरावती में आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: आंखों में रहने वालों को याद नहीं करते, दिल में रहने वालों की बात नहीं करते, आप तो हमारी रूह में बसे हैं, इसलिए मुलाकात की फरियाद नहीं करते।
0: अरे वाह भाई वाह, ये कौन शायर आए हैं भाई, जरा बताएं अपना नाम तो बताएं।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: दिलीप पाहुजा जी ने उदयपुर से झीलों की नगरी से हमें फोन किया है। गर्मी के क्या हाल चाल है उदयपुर में?
1: गर्मी तो 40-42 के आसपास चल रही है।
0: ऐसे में आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: अभी थोड़ा ठंडा है।
0: गर्मी के मौसम में कामकाज बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका किस चीज का काम है?
1: टेलरिंग व्यवसाय है, मतलब सिलाई का।
0: अपनी शॉप है?
1: जमा कोट वगैरह। जी भैया की शॉप है।
0: अरे वाह क्या बात है। आप जेंट्स टेलर हैं और या लेडीज टेलर हैं या दोनों? लेडीज जेंट्स।
1: जेंट्स।
0: अच्छा
1: जेंट्स ओनली।
0: तो गर्मी का मौसम है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी दूसरी सभा। सभा के आरंभ में सुनिए युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम में सभी युवा श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े हुए कुछ खास विषयों पर, साथ ही साथ करते हैं मनोरंजन, सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने। तो आज गुरुवार है और आज हम सुनेंगे मैथिली लोकगीत। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बेहद अहम विषय है। हम रोज इन चीज़ों से होकर गुजरते हैं, रोज इनके बारे में कहीं ना कहीं बातें करते हैं, रोज कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम इसमें अपना योगदान उतना नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की। आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण और युवा। युवाओं की क्या भागीदारी हो सकती है पर्यावरण को बचाने में? क्या हमने कभी बेहद संजीदगी के साथ इस विषय पर सोचा है, खासकर युवा वर्ग ने? स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, गेम्स, इन सब से इतर जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या हमने इसके बारे में कभी गंभीरता से सोचा है? आइए आज बात करते हैं और खुद को मजबूर करते हैं इस विषय पर गंभीरता से सोचने के लिए, न सिर्फ सोचने के लिए बल्कि कुछ जागरूक कदम भी उठाने के लिए। पर कार्यक्रम की शुरुआत में आपके मनोरंजन के लिए पेश करते हैं ये मैथिली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे यह लोकगीत स्वर था विभासेना का। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी, और आज बातें कर रहे हैं हम पर्यावरण संरक्षण में युवाओं के योगदान पर। पर्यावरण क्या है? देखिए, प्रकृति के द्वारा दिया गया एक आवरण। जिस तरह हम अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र का प्रयोग करते हैं, यानी उस आवरण का प्रयोग करते हैं, यदि वह आवरण मैला हो जाए, गंदा हो जाए, काफ़ी दिनों तक पसीने से भींगा हुआ रहे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? बहुत बुरा। आप चाहेंगे इसे जल्द से जल्द साफ किया जाए, और आप करते भी हैं। ठीक उसी तरह प्रकृति ने जो यह आवरण हमें दिया, हम नित्यदिन उसे गंदा करते जा रहे हैं, किंतु उसकी सफाई का जिम्मा कौन लेगा? निश्चित तौर पर युवाओं की दुनिया है, युवा सबसे शक्तिशाली हैं, हमें लेनी होगी इसकी जिम्मेवारी, हमें आगे बढ़कर आना होगा। आज औद्योगिकीकरण, प्रदूषण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। हम इन्हें कम कर सकते हैं, इसके लिए बेहद साधारण उपाय हमें करने होंगे, जैसे अधिक पेड़ लगाना होगा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की सख्त ज़रूरत हमें पड़ेगी ताकि भावी पीढ़ियाँ सुरक्षित रह सकें। देखिए, अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं, जो ऊर्जा है।

है उसको हम कम से कम व्यवहार में लाएं, जितनी आवश्यकता है उतना ही व्यवहार करें। ये सारी चीज़ें, ये सारी आदतें सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं, मुझे लगता है अगर हमें धरती को हरा भरा खुशहाल देखना है, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना है, तो ये आदतें हमें हमेशा के लिए लगानी होंगी। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति का अर्थ है वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिनसे हमें शुद्ध हवा, पानी और भोजन प्राप्त हो। किंतु हम नित्यदिन अपने स्वार्थ के लिए, मानव अपने स्वार्थ के लिए, हमने लगातार शहरीकरण किया, हमने लगातार औद्योगिकीकरण किया, हमने लगातार कंक्रीटों की इमारतें खड़ी की, हमने हरे जंगलों को साफ किया और वहां खड़ी कर दी हमने कंक्रीटों वाले बड़े बड़े जंगल, जिन्हें हम शहर के नाम से जानते हैं। खैर, ये सब तो हम कर चुके, लेकिन हमें अब ठहरने की आवश्यकता है। आप देखिए ना, युवा वर्ग में कई लोग ऐसे हैं जो गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मिट्टी के घरों में सुकून तलाश रहे हैं। हम छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? ऐसी जगहों पे जहाँ प्रकृति के दर्शन हो। क्यों? क्योंकि हम खुद ऊब जाते हैं इन कंक्रीटों के जंगल में रहते हुए, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है नहीं। लेकिन नए आयाम को छूने के लिए, नई नई चीज़ों को पाने के लिए स्वार्थ की दौड़ में हम अंधे हो गए हैं। इसलिए हम कंक्रीट, ईंट, पत्थर, तार, प्लास्टिक के जंजाल को बुनते चले जा रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, रुकिए, जीवन और सरल हो सकता है, जीवन और बेहतर हो सकता है। इसके लिए अनिवार्य नहीं कि हम सारे संसाधनों का उपयोग करते चले जाएं। कम संसाधनों के उपयोग में भी व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ने का अर्थ केवल यह नहीं कि मानव जाति आगे बढ़े, बल्कि संपूर्ण जीव जंतुओं के विषय में सोचते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम सब हैं तो एक दूसरे पर निर्भर, है ना? चर्चा आगे जारी है, लेकिन पहले आइए आनंद लें एक और लोकगीत का।

अपार जगजननी मैया के महिमा अपार। वंदना सिन्हा जी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत। युवा श्रोताओं को संबोधित यह कार्यक्रम जारी है एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: युववाणी, यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। युवा श्रोताओं को संबोधित इस कार्यक्रम में आज बातें हो रही हैं पर्यावरण संरक्षण में युवाओं का योगदान। जी हाँ, हम युवा क्या खास कर सकते हैं? देखिए, कल कारखानों से निकलने वाली गंदगी, रसायन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े वाहन, इन सब चीज़ों पर हमारा जोर नहीं चल सकता। इन चीज़ों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ जाती है। तो इतने बड़ी चीज़ों को सोचना नहीं है, क्या हम छोटे स्तर पर कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, खासकर गांव में रहने वाले युवाओं के पास तो बहुत साधन है। आपके पास खुली हुई जगहें हैं, गांव में खेत हैं, खलिहान हैं, और आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। गांव वैसे भी ज़्यादा हरियाली वाला क्षेत्र रहता है, लेकिन फिर भी हरियाली को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो युवा वृक्षारोपण कर सकते हैं। अब कब करें? जब दिल करे तब करें। जी हाँ, खास मौक़ों पर तो ज़रूर करें। आपका जन्मदिन है, लगा दीजिए कुछ पेड़। आपके घर में कोई फंक्शन है, लगा दीजिए कुछ पेड़। घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ, लगा दीजिए कुछ पेड़। आज घर में पूजा है, लगा दीजिए पेड़। जी हाँ, पेड़ को लगाने के लिए दिन नहीं देखना है, कोई मुहूर्त नहीं देखना है, पेड़ लगाइए, क्योंकि इनसे दिन और मुहूर्त दोनों ही ठीक होते चले जाएंगे। पेड़ों का लगना यानी ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का बढ़ना यानी प्रकृति का संतुलित होना। खासकर युवाओं को ये एक बात और समझना होगा कि हम संसाधनों का उपयोग तो कर रहे हैं, किंतु कहाँ तक, कब तक, कितना आगे बढ़कर? क्या जहाँ सब्जी लाने के लिए पैदल जाया जा सकता है बगल वाली नुक्कड़ तक, क्या हम वहाँ मोटरसाइकिल से जा रहे हैं? क्या दोस्तों के साथ टहलने के लिए पैदल जाया जा सकता है? क्या शान और रुआब के चक्कर में बाइक तो नहीं निकाल ले रहे, कार तो नहीं निकाल ले रहे? ज़रा देखिए,

निजी वाहनों का जितना कम प्रयोग करेंगे, ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और प्रकृति हमें थैंक्स कहती फिरेगी। ये जो दुनिया, ये जो पर्यावरण हमारा है, वो हमें धन्यवाद कहने लगेगा। अब सोचिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब शहर में रहने वाले लोग कहेंगे कि हमारे पास तो जगह या ज़मीन ही नहीं है, पार्क में सरकार की ओर से पौधे लगाए जाते हैं, हम नहीं लगा सकते। बालकनी में गार्डनिंग की जा सकती है, रसोई में छोटे छोटे पौधे लगाए जा सकते हैं जो रसोई की गर्मी को भी कम करते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं, ताज़ी हवा भी देते हैं। घर के अंदर उगने वाले कई पौधे हैं जिनमें कमल, ब्रह्म कमल इत्यादि पौधे हैं जो कम पानी और बिना धूप के भी सर्वाइव कर सकते हैं। इन्हें आप कमरे के अंदर लगा सकते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन प्लांट के नाम से जाना जाता है। और हमारे घर में ऑक्सीजन प्लांट तो वैसे ही है, तुलसी, पीपल, बरगद, इनकी पूजा तो हम सदियों से करते आए हैं। क्यों करते आए हैं? शायद यही कारण रहा होगा, ये हमें जीवन देते हैं, हर समय ऑक्सीजन देते हैं। हमारे पुरखे कितने समझदार थे जिन्होंने ऐसे पौधों को चुना पूजने के लिए, और हम प्रकृति का सत्यानाश करने पर लगे हैं। युवा साथियों, हम सबों को सोचना होगा। अब देखिए ना, मोबाइल की स्पीड बढ़ाने के चक्कर में इंटरनेट बहुत काम की चीज़ है। हम यूं चुटकियों में दुनिया से जुड़ जाते हैं, यूं चुटकियों में सारी चीज़ें हमारे मोबाइल में खुल जाती हैं। अभी कहिए, किसी विषय पर बात करने गूगल तैयार है कहने को। सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से कई खोए पुराने दोस्त भी मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, जिनको आपने कभी देखा नहीं मगर सोशल मीडिया पर वो आपके दोस्त हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके पोस्ट को लाइक करते हैं, आपकी बातों का समर्थन करते हैं, आपके साथ मज़े करते हैं। लेकिन क्या इंटरनेट की इस बढ़ती हुई स्पीड ने हमसे कुछ खूबसूरत चीज़ें नहीं छीन ली? जी हाँ, छीन ली। गौरैया, घर आंगन में आने वाली गौरैया कहाँ चली गई? गौर किया है आपने? ऐसे कई छोटे छोटे पंछी थे जिन पर इंटरनेट के बढ़ते स्पीड ने बहुत खराब प्रभाव दिया। दादी माँ कहा करती थी, गौरैया जिस आंगन में दाना चुगती है उस घर में अन्न धन लक्ष्मी का वास होता है। जरा सोचिए, गौरैया ही नहीं रहेगी, अन्न धन लक्ष्मी का वास कैसे होगा? पंछियों को बचाना, जानवरों को बचाना, जंगल को बचाना, प्रकृति को बचाना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य इसलिए है कि अगर इन्हें आज नहीं बचाया तो कल हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आज गौरैया गायब हो रही है, कल कोई और जीव, परसों कहीं इंसानों की बारी ना हो। युवा साथियों, आइए सचेत हों, पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, इंटरनेट का कम उपयोग करें, अपने वाहनों का कम उपयोग करें, जहां तक संभव हो पैदल यात्रा करें, साइकिल चलाएं, दोस्तों के साथ तो पैदल टहल नहीं जाएं। आइए प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दें। और हाँ, आजकल तेज आवाज में बहुत सारे गाने बजते हैं, ये भी दुनिया को खराब करने पर लगे हैं। युवाओं, आप जिस भी बारात में गए हों, जिस भी पार्टी में गए हों, आपका कर्तव्य बनता है कि लोगों को समझाएं कि देखिए, आवाज उतनी ही जितने में आनंद आ सके, पांव थिरक सके, ना कि अगल बगल के लोगों के दिलों में इतनी तेज हलचल हो जाए कि कोई दुर्घटना घट जाए। खैर, अभी सुनवाते हैं बेहद मधुर आवाज में आपको गीत, महल पर कागा बोला है रे, शारदा सिन्हा की आवाज़ है।

महल पर कागा बोला है रे। अभी सुन रहे थे शारदा सिन्हा जी के स्वर में ये सुंदर सा गीत। युवानी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोता, हम आपको बता दें कि जिस तरह आज हम एक खास विषय पर बात कर रहे थे वो था पर्यावरण संरक्षण और युवा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही किसी अन्य विषय पर बात करें जिसमें आपकी रुचि हो, तो आप वह विषय हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता यूं तो आपको याद है, लेकिन हम दोहरा देते हैं। कार्यक्रम युवानी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा, 8460004। हमें खत के माध्यम से आप अपने रुचि के विषयों पर लिख करके भेजिए, रुचि के विषय लिख कर भेजिए। हम आपकी बातों को, आपके विषयों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे ताकि युवानी और बेहतर और खूबसूरत बन सके। उम्मीद है आप हमें खत जरूर लिखेंगे। तो चलिए एक और गीत का आनंद लें संत कुमार झा जी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे संत कुमार झा के स्वर में यह लोकगीत। कार्यक्रम चल रहा है युवानी, युवा श्रोताओं को संबोधित। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण के बारे में, इनमें युवाओं का क्या योगदान हो सकता है। चलिए एक बार फिर दोहरा लेते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें। जितना हो सके वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल कम कर दें, वाहनों का उपयोग, निजी वाहनों का विशेषकर उपयोग उसी समय करें जब नितांत और बेहद आवश्यक हो, ऊर्जा को बचाएं, घरों में बिजली बचाएं, अगर पंखे के सामने नहीं है तो पंखा बंद रखें, दिन में लाइट का प्रयोग नहीं है लाइट बंद रखें, ऊर्जा का संरक्षण बेहद आवश्यक है। और इंटरनेट का उपयोग कम से कम करें, मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, और प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति उदारता रखें ताकि उनके घर भी बसे रहें और जैव विविधता जो है वो बरकरार रहे धरती पर, और हम सब सदियों तक ऐसे ही स्वस्थ जीवन इस धरती के साथ गुजार सकें, इस मिट्टी के साथ गुजार सकें।

योग गिरजा के स्वामी राखी कुमार के स्वर में अभी सुन रहे थे यह लोकगीत कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत। श्रोताओं, घड़ी की सुई कह रही है कि युववाणी कार्यक्रम को अब इस अंक को यहीं समेटना होगा हमें, लेकिन चलते चलते हम आपसे गुजारिश करते हैं, खासकर हमारे युवा श्रोताओं से, कि इस कार्यक्रम के लिए हम आपके सुझाव आमंत्रित करते हैं, आपके दिए हुए विषय को आमंत्रित करते हैं। इस कार्यक्रम को आप कैसा देखना चाहते हैं, इस कार्यक्रम में क्या क्या बदलाव चाहते हैं, ये सब कुछ आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके भेजे गए सुझाव, आपके भेजे गए शिकायतें, आपके द्वारा भेजे गए टॉपिक्स, हम सबको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा पता आपको याद है? जी हाँ, हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा 8460

4। तो देर मत कीजिए, उठाइए कलम, लीजिए हाथ में पोस्ट कार्ड और लिख भेजिए हमें अपने सुझाव, अपना विषय और कार्यक्रम के बारे में। हमारा आपका साथ यूं ही बना रहेगा। कल फिर मुलाकात होगी युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

नए जमाने के नए तराने, आकाशवाणी दरभंगा से। पहला गाना सुनिए सन ऑफ सरदार फिल्म से, आवाज है विशाल मिश्रा की। संगीत और बोल लिखे हैं जानी ने।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनवाते हैं फिल्म श्रीकांत से, आवाज है उदित नारायण की, आनंद मिलिंद और आदित्य देव ने संगीत दिया है।

नए जमाने के नए तराने, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। राम संपत का संगीत है और प्रशांत पांडे ने गीत लिखा है। फिल्म है लापता लेडीज़।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए फिल्म भीड़ से। रोमी और अनुराग साकिया की आवाज है, अनुराग साकिया के बोल और शकील आजमी ने संगीत दिया है।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए फिल्म द डिप्लोमेट में। रोमियो और अनुराग साकिया का संगीत है, कैसर मुनीर के बोल हैं, वरुण जैन की आवाज है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में

0: पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी दरभंगा से अब से कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे विद्यापति गीत। समय होगा संध्या के 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण करेंगे संध्या 6:25 पर। संध्या 6:30 पर सुनिएगा गांव घर के अंतर्गत जागरूक गांव, इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का समय होगा संध्या 7:00। इसके अंतर्गत चर्चा का विषय होगा अनाज का भंडारण कैसे करें। संध्या 7:30 पर हमारे पटना केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। 7:47 पर समय होगा जिले की हलचल का। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे संध्या 7:52 से। सिंगर हार यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 News@9 और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू खबरें। इनका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रात्रि के 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत, रात्रि 10:00 सुगम संगीत और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत।

अब सुनिए हमारे केंद्र से कल पहली सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कल की हमारी सभा प्रातः 5:45 पर वंदे मातरम गीत के संग आरंभ होगी। 5:50 प्रातः में आप सुनेंगे चिंतन। आलेख एवं वाचन होगा कुसुमाकर दुबे का। कृषि चर्चा का समय होगा प्रातः 5:55 पर। स्वास्थ्य चर्चा यह कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 6:05 पर। विषय होगा मोतियाबिंद बचाओ और निदान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रमन कुमार वर्मा। वंदना के अंतर्गत भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा प्रातः 6:10 पर। रामचरित मानस गान अनुराधा पौडवाल के स्वर में यह सुनेंगे आप प्रातः 6:40 पर। नमस्कार मिथिला यह कार्यक्रम सुनाएंगे प्रातः 7:05 पर। अंजुमन यह उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से। समय होगा प्रातः 9:10। प्रातः 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत और 10:30 पर भक्ति संगीत। शास्त्रीय गीत का आनंद आप ले पाएंगे पंडित जसराज के स्वर में। समय होगा प्रातः 11:00। प्रातः 11:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। प्रातः 12:00 सुनवाएंगे नए फिल्मों के गाने। नारी संसार महिला श्रोताओं को संबोधित यह कार्यक्रम सुनवाएंगे दोपहर के 12:30 पर। दोपहर के 1:00 सुनिएगा हिंदी समाचार। देशभक्ति गीत का प्रसारण करेंगे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर के 3:00 सुनिएगा प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत गुजराती गीत। गायक कलाकार होंगे सुरेश रावल। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। और अब कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता।

प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353, 9430029353 और 0627222481, 0627222481। समय याद रखें, रविवार 17 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण ले रहे थे। अब प्रस्तुत है विद्यापति गीत।

विद्यापति गीतों का आनंद आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से ले रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे राम कुमार मल्लिक के स्वर में यह विद्यापति गीत। आइए अगली रचना विद्यापति की सुनवाते हैं हम शारदा सिन्हा के स्वर में।

अभी आप विद्यापति गीत का आनंद ले रहे थे। कलाकार थी शारदा सिन्हा। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप मैथिली संवाद सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि अछि जे दरभंगा हवाई अड्डाक नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर कयल जायत। श्री चौधरी आइ दरभंगा हवाई अड्डाक सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हस्तांतरित कयल जयबाक अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित कऽ रहल छलाह। ओ कहलनि जे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणक अधिकारी लोकनिक संग होमयवला बैसक मे दरभंगा हवाई अड्डा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डाक रूप मे विकसित करबाक मांग करता। श्री चौधरी जिलाक शोभन मे एम्सक निर्माण काजक प्रगतिक समीक्षा कयलनि। संगहि ओ डीएमसीएच मे चलि रहल काजक प्रगति के लऽ कऽ सेहो अधिकारी सभक संग विचार विमर्श कयलनि। पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया आ कटिहार जिला मे आई नागरिक सुरक्षा अभ्यासक अंतर्गत ब्लैक आउट मॉक ड्रिलक आयोजन कयल जायत। मॉक ड्रिल सांझ 7 बजे सँ 7:15 धरि आयोजित होयत। एहि दरमियान आपातकालीन सेवा सभ के छोड़ि कऽ सभ सार्वजनिक लाइट बंद कऽ देल जायत। प्रशासन लोक सभ सँ मॉक ड्रिल मे सहयोगक अपील कयलक अछि। बिहार विधान परिषदक भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीटक लेल भेल उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सोनू कुमार राय जीत दर्ज कयलनि अछि। ओ एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद के करगर मुकाबला मे हरौलनि। ई सीट पूर्व एमएलसी राधा चरण शाह के विधानसभाक लेल निर्वाचित होयबाक बाद रिक्त भेल छल। उपचुनाव में करीब 97.96% मतदान भेल छल। परिणाम घोषित होयबाक बाद राजद कार्यालय में नेता आ कार्यकर्ता लोकनि खुशी मनौलनि। तेल कंपनी सब आब 10 लाख सँ बेसी आय वाला उपभोक्ता सब के गैस सब्सिडी नहि देत। एहि संबंध मे आईओसीएल, बीपीसीएल आ एचपीसीएल कंपनीक दिस सँ उपभोक्ता सब के निबंधित मोबाइल पर ई संदेश पठाओल जा रहल अछि। बिहार राज्य एलपीजी वितरक संघ सँ प्राप्त जनतबक अनुसार तेल कंपनी सभक दिस सँ पठाओल जा रहल संदेश मे 7 दिनक भीतर प्रतिक्रिया मांगल गेल अछि। जँ उपभोक्ता आपत्ति नहि जतबैत छथि तऽ हिनका सबके गैस सब्सिडी बंद कऽ देल जायत। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानक संख्या में कमी अनबाक निर्णय कयलक अछि। एहि लेल विदेशी मार्ग पर किछु सेवा अस्थायी रूपें रोकि देल गेल अछि। ई निर्णय वायु क्षेत्र नियंत्रण आ विमान ईंधनक ऊंच दाम के देखैत कयल गेल अछि। ई कटौती एहि वर्ष जून सँ अगस्त धरिक लेल होयत। मौसम विभाग आइ उत्तर पश्चिम आ उत्तर पूर्व जिला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा आ सहरसा मे मेघ गर्जन आ वज्रपातक संग वर्षाक संभावना जतौलक अछि। ओतहि एहि अवधि मे 40-50 किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ धूल भरल अन्हर बिहाड़ि सेहो आबि सकैत अछि। पूर्वी चंपारण जिलाक छतौनी थाना क्षेत्रक बरियारपुर सँ जिला आसूचना इकाई आओर एसटीएफ के टीम एक ऑटो रिक्शा सँ 5 हथियार तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि। मुजफ्फरपुर जिलाक मोहम्मदपुर खाजे गाम मे पुलिस छापेमारी कऽ शराब बनेबाक फैक्ट्रीक उद्भेदन कयलक अछि। मौका सँ एक व्यक्तिक गिरफ्तारी भेल अछि। किशनगंज जिला अंतर्गत भारत नेपाल सीमाक गलगलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल आ स्थानीय पुलिसक संयुक्त कार्रवाई करैत भारी मात्रा में ब्राउन शुगर आ भारतीय चीन, कतर आ सऊदीक करेंसीक संग एक आरोपी के गिरफ्तार कयल गेल अछि। मधेपुरा जिलाक पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह काज में लापरवाही करबा आ जनताक

0: शिकायतक प्रति नकारात्मक रवैया के लऽ कऽ तीन थानाध्यक्ष के निलंबित कऽ देलनि अछि। एहि मे भर्राहीक अरमोद कुमार सिंह, बिहारीगंज के कृष्ण कुमार सिंह आ पुरैनी थानाक चंद्रजीत प्रभाकर सम्मिलित छथि। अररिया सदर अस्पताल मे नागरिक सुविधाक विस्तार कैल जायत। जिलाधिकारी विनोद दुहन के अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितिक बैसक में ई बातक जनतब देल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाम घर।

0: गोर लागे छी उगना भाई संगे संग गाम घर के श्रोता लोकन छे आज जागरूक गाम के प्रसारण हैत तै के श्रोता लोकन के अहाँ के हार्दिक नमस्कार। आ आजुक दिन हम सब अहाँ के जागरूक गाम के अंतर्गत जे गामक विकास कोना होइया अइ पर चर्चा करै छी।
1: नमस्कार गोपी भाई ठीके कहलहुँ। आइ हमरा लोकन लऽ कऽ अबै छी कार्यक्रम जागरूक गाम, अइ अंतर्गत एकटा प्रायोजित कार्यक्रम सुनब आयुष्मान, एकर संगे लोकगीतक आनंद सेहो लेब। मुदा अइ सबसँ पहिने ठीके कहलहुँ जे किछु चर्चा कऽ लै छी। तऽ एखनुक बेरमे सौर ऊर्जाके बड़ बेसी महत्व अछि।
0: हँ, छैये कि
1: कारण ई जे अछि एहिसँ बहुतो लाभ अछि। सबसँ तऽ पहिने जे आर्थिक बचत होइत अछि, एकर सङ्ग सङ्ग ई एहन ऊर्जाके स्रोत अछि जे समाप्त नहि होइत अछि। कारण ई सूर्यक ऊर्जा होइत अछि, एहिसँ कतेको प्रकारक काज जेना औद्योगिक काज, घरेलू काज ईसब लैत छी, बिजली उत्पादन, अन्यान्य कतेको प्रकारक काज एहन होइत अछि जे हमरा लोकनि सौर ऊर्जाके उपकरण लगा कऽ एकर लाभ पबैत छी।
0: एकदम अहाँ उचित गप कहलहुँ उगना भाई। देखियौ, सौर ऊर्जा जे होइत अछि ओ अक्षय ऊर्जा होइत अछि, ओकर क्षय नहि होइए। तऽ एहन ऊर्जा अछि जे अहाँके पर्यावरणके मित्र अछि, पर्यावरणके अनुकूल अछि। एहि ऊर्जासँ कोनो प्रदूषण नहि पसरैत अछि, कोनो हानिकारक ग्रीन हाउस गैसके उत्सर्जन नहि होइए। आ ई जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेलपर निर्भरता कम करैत अछि
1: निश्चित रूप।
0: आ बिजलीसँ वञ्चित क्षेत्रमे बिजली पहुँचाबैत अछि, कारखानामे बिजली आपूर्ति केनाइ, स्वच्छ जलक आपूर्ति केनाइ, घरेलू काजमे एकर उपयोग, आओर अंतरिक्ष उपग्रहके क्षेत्रमे सेहो एकर उपयोग कयल जाइत अछि। उगना
1: गोपी भाई,
0: सौर ऊर्जा एकटा नवीकरणीय संसाधन अछि,
1: ठीके,
0: जकर अर्थ अछि कि कखनो समाप्त नहि होइत अछि। ई ऊर्जा सतत ऊर्जा स्रोत अछि जकर क्षय कखनो नहि होइत अछि।
1: गोपी भाई, सौर ऊर्जासँ हमरा लोकनि जे बिजलीके उत्पादन करैत छी,
0: हँ,
1: तऽ ओहिमे एकटा पैनल लगबऽ पड़ैत अछि जकरा सौर पैनल कहल जाइत अछि, आ ओहि पैनलके माध्यमसँ बिजलीके उत्पादन होइत अछि। तऽ ठीके कहलहुँ जे सौर ऊर्जा बड़ लाभकारी अछि।
0: सौर ऊर्जा जेना अहाँ कहली, सौर ऊर्जाके जे पैनल होइत अछि उगना भाई, तऽ एहिसँ अहाँके बिजली हमरा सबके भेटैए, आओर हमसब मात्र छै से बिजली उपभोक्ता नहि रहि जाइ छी, बिजली उत्पादक बनि जाइ छी। सौर ऊर्जासँ बेसी बिजलीके उत्पादन कऽ कऽ बिजलीके बेचियो सकै छी, नीक कमाइ कऽ सकै छी।
1: आ एकर सङ्ग सङ्ग एहि बिजलीके व्यवहार हमरा लोकनि कृषिके क्षेत्र

0: क्षेत्रमे सेहो बड़ बेसी कऽ रहल छी आ सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली से हमरा लोकनिके काज लेबाक लेल से सरकारी योजना सब सेहो चलि रहल अछि जाहिसँ हमरा लोकनि लाभ उठा सकै छी।
1: कारण सरकार के सब्सिडी भेटैए, सरकार प्रशिक्षणो दैए,
0: चाहै छलहुँ
1: प्रशिक्षणो दै छथि
0: सौर ऊर्जा के क्षेत्र मे एखन युवा लोकनि के नव रोजगार के एकटा सेहो अवसर भेटल छनि।
1: भेटल छनि युवा लोकनि मे तऽ अपने ऊर्जा होइ छनि, अथा ऊर्जा के स्रोत होइत जेत आ ई या अक्षय ऊर्जा जकर केकरो केकरो छै नहि होइए तऽ अइ अहाँके सोलर जे ऊर्जा अछि जे सौर ऊर्जा अछि ई लगबेलाके बाद बिजली के बिल बहुत कम या शून्य भऽ जाइए आ एकर उगना भाई मेंटेनेंस के जे लागत यऽ ओहो बड़ कम यऽ। ऊर्जा स्वतंत्रता आ सुरक्षा ई ग्रिड पर निर्भरता कम करैए जाहिसँ बिजली कटौती के समस्या खत्म भऽ सकैए।
0: ठीके कहलहुँ तऽ गोपी भाई फेर गपशप करब, मुदा आब की विचार?
1: विचार ई अछि कि अपने सब एकटा देवी गीत सुनी।
0: तऽ सुनल जाय
1: तऽ सुनै हमसभ।

0: वाह, कतेक सुंदर गीत छल, देवी गीत। हम तो देखलूं उगना भाई एकदम अहाँ ध्यानस्थ रही, ध्यान मग्न रही।
1: देवी के गीते तेहने छल आ जेहने गीत तेहने बोल ई कुंज बिहारी मिश्र सुना रहल छला।
0: बहुत नीक गीत छल।
1: गोपी भाई, हमरा लोकन के एखन जे ई बदलैत बेर अछि, एहन बेर में अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देबाक चाही। आ ताहू में एखन बच्चा बूढ़ हिनका तो और बेसी, आ ओना तो स्वास्थ्य पर युवा लोकन के सेहो ध्यान देबाक चाहिए। कारण स्वास्थ्य एहन धन अछि जे जो एक बेर चलि जाइत अछि तो फेर ओ दोबारा नहि अबैत।
0: एकदम अहाँ बड़ नीक गप कहलहुँ उगना भाई। देखियो बदलित मौसम बदलित समय में स्वास्थ्य पर अहाँ के बड़ ध्यान दे के जरूरत अछि। किया तो केकरो भोर में देखे छी जाड़ पड़े आ दुपहरिया में रौदी जखन आबे तो गर्मी पड़े लगे आ फिर रात में अहाँ के जाड़ पड़े लगे। तो एक दिन में अहाँ के मौसम कतेक बेर करवट लिये तो एहि आवश्यक है कि खान पान जे छे ओ हम सब छे से अहाँ के संतुलित राखी। आब गर्मी के मौसम छे तो छे से अहाँ के जल के बेसी से बेसी जल पीबी। खीरा भेले ओकर बाद अहाँ के और जे ठंडा चीज भेल लताम भेल ई सब खेबा के चाही। संगे संग योगाभ्यास निश्चित रूप से करवा के चाही। आ जो हम सब साकांक्ष रहब आ सकारात्मक चिंतन करते रहब तो काजो सकारात्मक है।
1: गोपी भाई,
0: योगाभ्यास केला सब टहला
1: संग संग इहो ध्यान रखबाक अछि जे किछु जे हमरा लोकनि छी जिनका मधुमेह आ रक्तचाप ई दुनू बीमारी अछि तो ई दुनू बीमारी छूटैत नहीं अछि, एकरा नियंत्रण में राखब।
0: नियंत्रण में राखब और खान पान के द्वारा
1: यह कह चाहे छलहुँ जे एखनो बेर
0: कोनो तनाव नहीं राखी
1: कखनो नहीं। कारण काज सब होइत अछि, तनाव नहीं राखी,
0: तनाव नहीं हेबाक चाही।
1: आ प्राय एखन देखल जा रहल अछि जे ई मधुमेह आ रक्तचाप ई दुनू तनाव से प्राय
0: भ रहल खान पान असंतुलन आ तनाव।
1: जखने तनाव में रहब तो अहाँ के दिनचर्या गड़बड़ा जाए, जीवन शैली गड़बड़ाएल, खान पान गड़बड़ाएल, सब चीज गड़बड़ाएल, माने रहन सहन नहीं उचित ढंग से नींद नहीं भ पाएल तनाव के कारण। तो ई सब जे अछि कारण सब मिलकर से बीमारी को उत्पन्न करते अछि।
0: शारीरिक व्यायाम जे या शारीरिक व्यायाम
1: देह पर पड़ते
0: आ शारीरिक जे परिश्रम छे से ओहो लोग किछ कम कर देलक हँ तो शारीरिक परिश्रम निश्चित रूप से करबाक चाही। कम से कम आधा घंटा शरीर पर ध्यान दी, व्यायाम करी आ योगाभ्यास करी आ संगे संग छे से किछ देर ध्यान हेबाक चाही जैसे कि अहाँ के मानसिक रूप से अहाँ आरोग्य बनै छी। आ मानसिक आरोग्यता जे अछि ओ शारीरिक आरोग्यता के कारक बनैत अछि। तऽ हम देख रहल छी कि आब अहाँ के प्रायोजित कार्यक्रम के समय भ रहल अछि तो हम सब आजुक दिन प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान सुनी।
1: तो सुनल जा
2: आयुष्मान, ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। आप दिल खोलकर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। पर अब धीरे धीरे, खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से, लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है, और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं।

0: बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
1: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
0: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली NCR से भी पेशेंट आ रहे हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबों के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 6206803040, 6206803040। ये नंबर है और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
0: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर OT है, ICUs में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर ICUs है, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं, तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंस है जितना हमारे यहाँ है। तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है, और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 6206803040

4062-680-3040 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती

0: 6206803040 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है? क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
1: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है, बट बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मैल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
0: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामणि, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
0: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 6206803040 ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
0: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: हाँ, एखन हम सब प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान सुनि रहल छलहुँ हँ। बड़ नीक जानकारी देल गेल उगना भाई, फरसाके जानकारी देल गेल कि अइ अस्पतालमे अहाँके आयुष्मान कार्ड योजना जे अछि, अइके द्वारा, अइके अन्तर्गत अइठाम इलाज होइए। आ सबसँ पैघ गप अछि कि स्वास्थ्यके जे महत्व अछि, कि स्वास्थ्य समग्र विकासक आधारशिला अछि, स्वास्थ्यपर जीवन निर्भर अछि।
4: आ हमरा लोकनिके स्वस्थ रहबाक लेल सबसँ पहिने अपन जे आहार अछि ओहि पर ध्यान दी, आ एहि पर जो हमरा लोकनि ध्यान दै छी तऽ

0: ई एकटा निश्चित रूप से ध्यान दी जे आहार एखनुक बेर में एहन ली जे सुपाच्य हुआ टटका हुआ तो
1: तेल मसाला के उपयोग कम से कम हुए
0: गप सप।
1: हाँ
0: एकटा ई सूचना है ओ की है कार्यक्रम संबंधी ओ कनी दो दियो।
1: हाँ हाँ हमरा लग एकटा सूचना है कार्यक्रम संबंधी एकटा सूचना श्रोता लोकन उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के साइलेंट किलर से हो कहल जाइत है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां यह है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगला अंकक विषय। विशेषज्ञ हेता डॉक्टर ए के गुप्ता आ प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़वा के हेतु हमर सबक फोन नंबर होयत 9430029353। एक बार फिर सुन लिया 9430029353 आ दोसर जैसे अहाँक लैंडलाइन है 0627222481। समय याद रखू ई आबे वाला रवि अगला रवि 17 मई 2026 दिन का 11 बजे सूचना संपन्न भेल।
0: आ आब हमरा लोकन खेती गृहस्थी में स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के स्वागत करे छन।
1: हाँ हाँ अब देखियो जैसे अखन अपने सब गेहूं का कटनी तटनी भ गेल दौनी भ गेल अब अनाज का भंडारण भ रहल है तो अनाजक जो भंडारण है उगना भाई एकरा कर ले सबसे पहले की करी कि अनाज का 3-4 दिन धर करगर धूप में करगर रौद में जकरा कहे छे डकहा रौद ओहि में ओकरा नीक जना सुखा दी ताकि नमी जे है वो 10% कम भ जाए। अनाज का साफ सूखल जगह पर ओहिठमा एयर टाइट कंटेनर या जूट का बोरी में ओकरा जमा करी।
0: ई ध्यान राखी गोपी भाई जे जूटक जे बोरा ले छे ओहि बोरा में ई रहा जे साफ रहा संगे ओ अहाँ के 9 बोरा होबाक चाही। आ ओकरा तखन व्यवहार करी एकर संगे संग जै गोदाम में ई बोरा के हमरा लोकन रखै छी ओहि गोदाम के नीक जकाँ निरीक्षण कऽ लेबाक चाही जे ओहि में मूसक बिल नहि तऽ अछि एकर संगे जो
1: जो बिल देख ली तो ओकरा मुंदी
0: मुंदिए। एतबे नहि इहो ध्यान राखी जो गोदाम के जे केवार खिड़की होइत अछि ओ ठीक जकाँ अइ कि नहि अइ जो नहि अइ तो ओकरो नीक जकाँ ठीक करा ली जाहिसँ कि मूसी सब नहि जाय। एकर संग संग हमसब बोरा जे रखै छी ओ बोरा के रखै के ढंग ई राखी ध्यान जे गोदामक जे फर्श होइत अछि ओहिसँ कम 4 आंगुर उठा कऽ रखबाक चाही तऽ ताहि लेल लकड़ी के जे पटरी होइत अछि ओकर व्यवहार कयल जाइत अछि आ ओहि पर बोरा के छल्ली लगा कऽ एक पर एक गेट कऽ तखन रखबाक चाही।
1: कीड़ा सँ बचेबाक लेल नीमक सूखल पात आ सुरक्षित रसायन के उपयोग करबाक चाही आ साफ सफाई कहबे गेलहुँ कि भंडारण के स्थान पर कोठी भेल ड्रम भेल कमरा के पहिने नीक जना साफ कऽ दी और धूप रौद दिखा दी। अनाज के नमी से बचाबी नहीं तो अहाँके फफूंद में लग सकी है। अनाज में नीमक सूखल पात सूखल हरदि के गांठ आ सूखल लाल मिर्चाई राखे से
0: ई सब प्राकृतिक उपचार है जे कीड़ा नहीं लागा।
1: आ घर पर छोट स्तर पर अहाँ के स्टील या प्लास्टिक का एयर टाइट डिब्बा के उपयोग करी। भंडारण के जो जगह हेबा के चाहिए वो जमीन से ऊपर जना कहलिए लकड़ी के फट्ठा पर और दीवार से ओकरा दूर रखी। आ रासायनिक उपचार में जो बेसी अनाज है तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड सल्फोस का गोली कोनो विशेषज्ञ के सलाह पर ओकरा उपयोग कर सकै छी।
0: कारण ओकर मात्रा पर ध्यान राखऽ पड़ैत अछि जे कतेक मात्रा दिए के तैं निश्चित रूप से एकर जे विशेषज्ञ छथि हुनकर परामर्श सँ से कोनो प्रकारक रसायनक व्यवहार करबाक चाही।
1: आ जूटक बोरी में या मेटल के ड्रम में बीच बीच में नीम के पात राखि दी। आब जेना दालि अछि तऽ एयर टाइट कंटेनर में सूखल पात के संग राखी ओकरा तो ई सब जे सावधानी राखब आ अनाज निकालित समय बराबर साफ और सूखल हाथ या बर्तन के उपयोग करी क्या हाथ जे भिजल रहत तो वो अहाँ के अनाज में नमी आनि देत।

0: आ नमी जायत तो अनाज में अहाँ के फफूंद लग जायत, सूरा लग जायत।
1: गोपी भाई, तैं हमरा लोकन के अन्न के भंडारण में निश्चित रूप से विशेष ध्यान रखबा काज बियर पर गुणवत्ता ओकरा में बनल रहे, अन्न में पौष्टिकता बनल रहे, तैं एकर भंडारण पर विशेष ध्यान रखबा।
0: जे मेहनत केलो हो तो मेहनत जे सुरक्षित हैत, सार्थक हैत, ओ तो तखने न हैत जखन कि अनाज सुरक्षित रहत, ओकर सुरक्षित भंडारण हैत।
1: तो हमरा लोग फिर गपशप करब गोपी भाई, आप की विचार?
0: विचार तो इएह है कि गपशप भेले, आब जे गीत नाद हैत तो इससे तन आ मन शीतल हैत।
1: के छथि कलाकार?
0: कलाकार छथि अहाँके शारदा सिन्हा। सुनी हम सब ई गीत
1: सुनल।

0: सखी है श्याम घर नहीं आयो बदरा घिर घिर आयन। एखन गीत सुने छलहुँ अपने सब शारदा सिन्हाके स्वरमे, बड़ नीक गीत छल। आ देखलहुँ गुना भाई एहि गीतपर एकदम अहाँ झूमि रहल छलहुँ। आ देखियौ उगना भाई, एखुनका जे समय अछि एहिमे गेहूँके तऽ हमसब भण्डारण कैए रहल छी, आ सङ्गे सङ्ग ई जे मध्यम जे वर्षा भेल हँ एहि कारण खेतमे पर्याप्त नमी आबि गेल, जे बाउके लेल अनुकूल परिस्थिति प्रदान करैत अछि। एहि लेल किसान भाई करैत कि 15 मईसँ हरदिके बाउ आरम्भ कऽ देत। हरदिके जे उन्नत किस्म अछि, जेना राजेन्द्र सोनिया भेल, राजेन्द्र सोनाली भेल, ई उत्तर बिहारक लेल अनुशंसित अछि। आ खेतक जोताइमे 25-30 टन गोबरक खाद, सरल खाद, नेत्रजन 60-75 किलोग्राम, स्फुर 50-60 किलोग्राम, पोटास 100-120 किलोग्राम आ जिंक सल्फेट 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करबाक चाही। हरद के लेल बिया दर 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर राखी। आ बिया प्रकंद का जे आकार है वो 30-35 ग्राम है, जैसे 4-5 स्वस्थ कली है। रोपे के जे दूरी राखी वो 30 सेंटीमीटर अहाँक लाम आ 20 सेंटीमीटर चौड़गर हेबाक चाही। आ खाद जे खोदबे ओकर गहराई गहीर हेबाक चाही 5-6 सेंटीमीटर। नीक उपजक लेल 2.5 ग्राम डाइथेन M45 +0.1% कार्बेंडाजी,
1: माने दोनों के
0: मिलाकर कार्बेंडाजी प्रति किलोग्राम बिया के दर से घोल बना ली। आ ओकर बाद ओकरा आधा घंटा तक उपचारित केला के बाद तखन बाउ करी।
1: ठीक है कहलो। आ गोपी भाई, अदरक जकरा हमरा लोकन आदि कहै छी, तकरो बाउग हमरा लोकन 15 मई सँ कऽ सकै छी, अर्थात काल्हि सँ
0: कऽ सकै छी।
1: आदिक उन्नत प्रभेद अछि मारान आ नदिया, जे अपना सभक एहिठाम उत्तर बिहारक लेल अनुशंसित अछि। खेत के जोतबा काल 25-30 टन गोबरक सरल खाद,
0: हाँ
1: ई मात्रा एहि पर ध्यान राखी।
0: अच्छा,
1: जे दिए आ ई सरल खाद यानी कंपोस्ट भेल, एकर संगे नेत्रजन 30-40 किलोग्राम, स्फुर 50 किलोग्राम, पोटास 80-100 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 20-25 किलोग्राम आ बोरेक्स 10-12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर सँ व्यवहार कऽ सकै छी, अर्थात ई सब उर्वरक भेल।
0: अच्छा अच्छा, हाँ।
1: आदि के लेल बिया के दर 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमरा लोकनि राखि सकै छी।
0: अच्छा, प्रति हेक्टेयर 18-20 क्विंटल
1: राखि सकै छी। ओहिमे रकबा के अनुसारे एकर संगे बिया के प्रकंदक आकार 20-30 ग्राम, जाहि में 3-4 टा स्वस्थ कली हेबाक चाही। रोपनी काल एकर दूरी 30×20 सेंटीमीटर राखी। नीक उपजा लेबाक लेल, अर्थात मनोनुकूल उपजा लेबाक लेल हमरा लोकनि रीडोमिल दवाई के सुन

0: 0.2% के घोल बना कऽ ताहिसँ बीया के उपचारित कऽ कऽ बाउग करब तऽ बेसी लाभ हैत। हँ,
1: आ खरीफ मकई के बाउग के लेल खेतक तैयारी कऽ ली नीक जेना, आ खेतक जोताईमे 10-15 टन गोबरक सरल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करी। खरीफ मकई के बाउग 25 मई सँ हमसब कऽ सकै छी। आ लत्तीदार जे तीमन तरकारी होइया, जेना सजमनि भेल, करैला भेल, खीरा भेल, ओहिमे लाल भिरिंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरफॉस 76 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर जल के दर से छिड़काव आकाश साफ रहला पर करी।
0: ओल के रोपनी के लेल एखन सेहो बेर अछि, हमरा लोकनि एहि लेल अनुशंसित प्रभेद अछि गजेंद्र, जकरा लऽ सकैत छी।
1: अच्छा अच्छा,
0: ओल के कंद कटल होयबाक चाही, जकरा ट्राइकोडर्मा भिड़ी दवाई के 5.0 ग्राम प्रति लीटर गोबर के घोल में मिलाकर फिर 20-25 मिनट धरि ओकरा ओहिमे डुबा कर रखला के बाद ओहि कंद के निकाल कर छाया में 10-15 मिनट धरि सुखाबी। तकरा बाद एकरा उपचारित कंद के लगाबी, जाहिसँ मृदा जनित जे बीमारी होइत अछि,
1: माटिमे बीमारी जे होइए
0: माटि वला, ओहिसँ से एकरा बचबाक संभावना रहैत अछि, माने ओ कम होयत जो उपचारित कऽ कऽ बीया के लगायब तऽ, आ नीक उपजा हमरा लोकनिके प्राप्त होयत।
1: आ नीक उपजा प्राप्त होयत उगना भय भाई, तो हमसब छै से अहाँके एकरा बीज के कैचा कमायब, आ कैचा जो आयत गीतनाथ सुने के मन करत,
0: मन खनहन रहत,
1: खनहन रहत। हम देख रहल छी कि अहाँके गीतनाथ सुने के बड़ प्रबल मन भऽ रहल यऽ, तऽ किया नहि हमसब एकटा छै से नचारी नंद शंकर झा के स्वर में सुनी।
0: तऽ सुनल

0: सखी है रूसल छेत बम्बुल्ला हिनका कोना मनायब न। नंद शंकर झा के स्वर में हम सब नचारी सुने छलो हँ, बड़ नीक नचारी छल। आ उगना भाई जो अहाँ के गर्मी के मौसम अच्छे में गाय के महीस के जो करगर रौदी उग जाइए आ लू से बचाबे के लिए विशेष देखभाल के आवश्यकता है ताकि हुनक स्वास्थ्य और दूध उत्पादन जो है वो प्रभावित नहीं है।
1: तो सबसे पहले ई ध्यान राखी जे ई दुधारू जे पशु है एकरा जे हमरा लोकन बांधै छी एकर बथान जे होइत अछि ओ छाहरि में हेबाक
0: चाही
1: गर्मी मास में, जना जाड़क मास में रौद में बथान बना दै छियै तऽ बथान छाहरि में हेबाक चाही। एकर संगे गौशाला के जे मुँह होइत अछि खिड़की होइत अछि ताहि पर पॉलिथीन अथवा बोरा के चट्टी दिए जे गर्म हवा भीतर नहीं जाए।
0: आग जाए बेसी गर्मी भेला पर दिन में 2-3 बेर मालजाल पर जल का छिड़काव करी या ओकरा नहाबी। तो देखियो अही के संगे जे खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय वो संपन्न हेबाक अछि। किसान भाई सो हम सब आज्ञा ली। नमस्कार उगना भाई।
1: नमस्कार गोपी भाई।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा सीआईएसएफ को मिली कवि विद्यापति के नाम पर होगा हवाई अड्डा। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव में जदयू को हराकर राजद ने जीत दर्ज की। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम शुरू, महीने के अंत तक परिचालन शुरू होने की संभावना। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दरभंगा हवाई अड्डे का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। श्री चौधरी आज दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हस्तांतरित किए जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की मांग की जाएगी।
1: हमने अगले सप्ताह एक बैठक रखा है जिसमें सिविल एविएशन के सभी पदाधिकारी भारत सरकार से आएंगे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि दरभंगा का जब एयरपोर्ट उद्घाटन होने लगेगा तो दो मांग जो यहाँ पर आई है, बाबा विद्यापति जी के नाम पर यहाँ का एयरपोर्ट हो, उसको जरूर कराने का प्रयास करूँगा। और दूसरा जो एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाने का उसी दिन प्रयास करूंगा।
0: श्री चौधरी ने जिले के शोभन में एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने टीएमसीएच में चल रहे कार्य की प्रगति को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। बिहार विधान परिषद की भोजपुर सब अक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट के उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जीत दर्ज की है। उन्होंने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को 354 मतों के अंतर से पराजित किया। यह सीट पूर्व एमएलसी राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। परिणाम घोषित होने के बाद राजद कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सोनू कुमार राय की जीत पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और नेताओं को बधाई दी है।
2: बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
0: पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में आज नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि नागरिक सुरक्षा अभ्यास किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार करने का अभ्यास है।
3: घड़ी की सुई में जैसे ही 7 बजे सायरन की आवाज से पटना, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में जनजीवन थम सा गया। विद्युतापूर्ति पूरी तरह बंद कर दी गई। 15 मिनट तक ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई और गाड़ियों के हेडलाइट्स बंद हो गए। इस दौरान लोगों ने संयम दिखाते हुए प्रशासन का पूरी तरह सहयोग किया। एक बार फिर सायरन की आवाज बजने के बाद स्थिति सामान्य हुई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री।
0: देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की सूचना नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी।
4: एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और

0: इसके चलते हमारे क्रूड एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
1: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के उद्देश्य से अपने कारकेड में वाहनों की संख्या घटाने का निर्देश दिया है। अब राज्यपाल के कारकेड में केवल 3 वाहन शामिल रहेंगे। पश्चिम एशिया में जारी संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही सचिवालय के अधिकारियों और कर्मियों को भी अत्यंत आवश्यक होने पर ही सरकारी वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है। इधर नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। उन्होंने अन्य लोगों से भी ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करने को कहा।
2: मुझको लगता है यथासंभव सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है और खुद भी फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, तो हम सबका भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र हित में जितना संभव हो एनर्जी सेव करें। सब लोग प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो एनर्जी कंजर्वेशन है उस दिशा में उसके लिए भी मदद करेंगे और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है।
1: खगड़िया जिला प्रशासन ने प्रत्येक शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में कर्मियों और अधिकारियों को बिना वाहन आने की अपील की है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की 100 सदस्यीय टीम बेली ब्रिज का निर्माण कर रही है। बीआरओ के अधीक्षण अभियंता विपिन कुमार चांद ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से के पास 24 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक सेतु पर परिचालन शुरू होने की संभावना है।
3: पहुंचना शुरू हो गया है। अब जो टेक्निकल कार्यक्रम है अलाइनमेंट सेट करके उस पर हम लोग लगने वाले हैं। सामान आने के बाद लॉन्चिंग वगैरह करने में 6-7 दिन 8 दिन 10 दिन का ऐसे समय लगता है। सब मिला करके बहुत सारे कार्यक्रम करने होते हैं इसके अंदर, तो हो जाएगा।
1: इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने भी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं इस अवधि में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है।
5: दिनांक 14 मई को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को 15 दिनों के अंदर निपटाने का आदेश दिया है। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का निष्पादन हर हाल में 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में टीबी के मरीजों को अब 30 दिनों की दवा एक साथ मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में टीबी की दवा उपलब्ध करा दी गई है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार

0: सवाल की गिरफ्तारी हुई है। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने राजद नेता की गिरफ्तारी पर कहा कि यह एक गंभीर मामला है, राजद के नेता छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: दिल्ली पुलिस ने पूरे भारत में सक्रिय एक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का काम है नीट जैसी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र के नाम पे भोले भाले बच्चों को ठगना, और इस ठगों के गिरोह का मास्टरमाइंड है तेजस्वी का दुलारा राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल। तेजस्वी जी, अब आप क्या कहेंगे बताएं।
0: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सफल छात्रों को बधाई दी है। श्री कुमार ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। जदयू कोटे के मंत्री सप्ताह में 5 दिन पटना प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी और श्वेता गुप्ता ने लोगों की समस्याओं को सुना। राजगीर में लगने वाले मलमास मेले को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने राजगीर और हावड़ा के बीच एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन बिहार शरीफ, अस्थावां, परभिघा, शेखपुरा, केउल और भागलपुर के रास्ते चलेगी। हावड़ा राजगीर स्पेशल ट्रेन 16 मई से 17 जून तक तथा राजगीर हावड़ा स्पेशल ट्रेन 17 मई से 18 जून तक प्रतिदिन संचालित होगी। ट्रेन में शयनयान और साधारण श्रेणी सहित कुल 14 कोच लगाए गए हैं। किशनगंज जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे कलगलिया थाना क्षेत्र से एसएसपी और स्थानीय पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और भारत, चीन, कतर तथा सऊदी की करेंसी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों की तस्करी से जोड़कर जांच कर रही है। कैमूर जिले के भभुआ व्यवहार न्यायालय ने असम राइफल्स के सूबेदार मेजर शशिभूषण तिवारी की हत्या के मामले में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त सभी दोषियों पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर ट्रक, कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मधेपुरा के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह ने कार्य में लापरवाही बरतने और जनता की शिकायतों के प्रति नकारात्मक रवैये को लेकर 3 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। इसमें भर्राई के थानाध्यक्ष अरमोद कुमार सिंह, बिहारीगंज के कृष्ण कुमार सिंह और पुरैनी थाना के चंद्रजीत प्रभाकर शामिल हैं। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर से जिला आसूचना इकाई और एसटीएफ की टीम ने एक ऑटो रिक्शा से 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं वैशाली जिले के बेदुपुर थाना क्षेत्र से एसटीएफ और पुलिस की टीम ने हथियारों के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के महम्मदपुर खाजे गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। शेखपुरा जिले के चेवारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने जन स्वराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद सफी ईमान और उसके भाई को 3 वर्ष पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फंसे रोहतास के 28 मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया। इन सभी को वहां बंधक बनाकर काम लिया जा रहा था। इधर शेखपुरा में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। इन बच्चों के नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया सदर अस्पताल में नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जिलाधिकारी विनोद दोहन की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल परिसर में LED डिस्प्ले और कूलर युक्त RO लगाने सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने मॉडल स्कूल ओंकार प्रवेशिका विद्यालय केशरबाग का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति कम पाए जाने पर उन्होंने अभियान चलाकर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, ICT लैब की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा CISF को मिली, कवि विद्यापति के नाम पर होगा हवाई अड्डा। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव में जदयू को हराकर राजद ने जीत दर्ज की। विक्रमशिला सेतु की मरम्मत का काम शुरू, महीने के अंत

0: तक परिचालन शुरू होने की संभावना। और मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भोजपुर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
1: बिहार विधान परिषद के भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भोजपुर और बक्सर में 12 मई को मतदान संपन्न कराया गया। कुल 6086 निर्वाचक मतदाताओं में 97.96% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना आज 14 मई को हुई, जिसमें राजद के सोनू राय ने जदयू के कन्हैया प्रसाद को 300 से भी अधिक मतों के अंतर से परास्त कर दिया है। यह सीट राधाचरण शाह के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। संदेश से जदयू के टिकट पर विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस सीट से जदयू के कन्हैया प्रसाद, राजद के सोनू राय सहित 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे, जिनमें बागी उम्मीदवार भी शामिल हैं। भोजपुर जिले में भारत की जनगणना विश्व 27 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से जरूरी आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने आम लोगों से अपील की है कि नागरिक सही सही जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कर्मियों का सहयोग करें। पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदने और पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने की अपील की है। श्री मोदी की इस अपील पर जिले में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सर्राफा व्यापारी चिंतित हैं, हालांकि वे इस विषय पर बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। वहीं आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा है कि वे तेल, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल तथा सोना चांदी की खरीद से जुड़ी के पक्ष में हैं। लोगों का कहना है कि यह कदम देश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों जिले में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ तथा कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस मंत्रिमंडल विस्तार में

0: भोजपुर से दो नेताओं को मंत्री बनाया गया है। आरा से भाजपा विधायक संजय सिंह टाइगर को इस विधानसभा कार्यकाल में लगातार दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। उन्हें उच्च शिक्षा सह विधि विभाग का प्रभार सौंपा गया है। वहीं जगदीशपुर विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा को मंत्रिमंडल में नए चेहरे के रूप में शामिल किया गया है। उन्हें योजना एवं विकास विभाग का प्रभार सौंपा गया है।
1: और अब प्रस्तुत है बक्सर जिले की हलचल, इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
2: बक्सर जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य जारी है। प्रागण घर घर जाकर लोगों से जरूरी आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है जो 30 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि नागरिक सही से जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कर्मियों को सहयोग करें। इससे पूर्व राज्य सहित जिले के 17 अप्रैल से 1 मई तक स्व जनगणना अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से पूछे गए सवालों का जवाब देकर जनगणना में भाग लिया। प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए बक्सर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत उन्हें सहजने और डिजिटलीकरण की मुहिम तेज कर दी गई है। बक्सर में गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की 100 वर्ष से पुरानी एक अनमोल पांडुलिपि प्राप्त हुई है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन इन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण और भौतिक संरक्षण पर विशेष जोर दे रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सहले ने सीताराम संग्रहालय का निरीक्षण करते हुए बताया कि यह अभियान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य चलाया जा रहा है। बीते दिनों जिले के व्यवहार न्यायालय में वर्ष के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सोनी श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश काजल झा, डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस शिविर में सुलहनीय आपराधिक मामलों, वाहन दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक ऋण, बिजली विभाग से संबंधित मामले सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आपसी सहमति के आधार पर सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। बीते दिनों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इंटरमीडिएट 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में जिले के लगभग 10,000 छात्रों ने भाग लिया था। परिणाम जारी होने के बाद विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखा गया। जिले के हजारों विद्यार्थियों ने बेहतर अंक लाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। सफल छात्र छात्राओं ने उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की, वहीं शिक्षकों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुर और बक्सर जिले की हलचल। भोजपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा, जबकि बक्सर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता शशांक शेखर।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनवाते हैं दिल्ली की फिल्म में नुसरत फतेह अली खान और साथियों की आवाज में गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अगला गाना सुनते हैं शान और मंजिरा की आवाज में। अनवर सागर के लिखे गीत को संगीत दिया है अतुल ने। फिल्म है कॉलेज कैंपस।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिंगर हार।

कार्यक्रम सिंगरहार सुन्निहार समस्त गोटे के स्वागतक संग माला झाक नमस्कार। एक कार्यक्रम में अपने लोगों साहित्य आ साहित्य से संबंधित विभिन्न विषय पर चर्चा सुने छी। पद्य के जो गप करी तो काव्यक सौंदर्य अनुपम होते छ। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य पढ़वा व नाटक देखवा सो जे विशेष प्रकारक आनंद प्राप्त होते छ ओ काव्यक सौंदर्य में वृद्धि आनेत छ। यह अनुभूति व आनंद रस कहबैत छ। ई व्यक्तिगत संकीर्णता सो मुक्त होत छ। काव्य में रस स्थायी भाव विभाव अनुभाव आ संचारी भावक संयोग सो निर्मित व अभिव्यक्त होत छ। आयह रसक अंग होत छ। स्थायी भाव रस निरूपण में एकटा शास्त्रीय श्रेणी अछ। रस सिद्धांत में स्थायी भावक माने प्रधान भाव बुझल जाइत अछि। प्रधान भाव व्याह कहबैत अछि जे रसक अवस्था धरि पहुँचैत अछि। आविभाव ओहि वस्तु आ विषयक वर्णन होइत अछि जकरा प्रति कोनो प्रकारक भाव वा संवेदना होइत अछि। माने भावक जे कारण होइत अछि व्याह विभाव भेल। ओतहि जाहि ठाम विषयक बाहरी चेष्टा के उद्दीपन कहल जाइत अछि ओहि ठाम आश्रमक शरीर विकारक अनुभव मानल जाइत अछि। अनुभव सदा आश्रय सँ संबंधित होइत अछि। दोसर दिस मोनक चंचल विकार के संचारी भाव कहल जाइत अछि। संचारी भाव व्यभिचारी सेहो कहबैत अछि। पानिक बुलबुला जका उठैत आ फेर शांत होइत रहैत अछि। भारतीय काव्य शास्त्रक अनुसार काव्य में रस के महत्व ओकर विभिन्न रूप सँ जानल जा सकैत अछि जकर चर्चा आगा हम करैत रहब। एहि मध्य सुनै छी ई देवी गीत।

कुंज बिहारी मिश्र सँ सुन रहल छलहुँ ई देवी गीत, जाहिसँ आत्मिक शांति भेटैत अछि। गीत संगीत सेहो पद्य साहित्यक एकटा सुंदर रूप अछि, सुंदर श्रृंगार सेहो होइत अछि। श्रृंगार

0: काव्यक प्रमुख रस अछि, जेकर आधार आकर्षण मानल गेल अछि। एहिमे दुखद आ सुखद दुनू तरहक अनुभूति होइत अछि। काव्यमे हास्य रस के महत्व सेहो कम नहि, बड अछि। हास्य रसक स्थायी भाव यह थिक। हास्यक विभाव वा कही जखन नायक नायिका में किछ अनचित्यक आभास पाबि लेल जाइत अछि, तऽ ओकरा सँ स्थायी भाव जागृत भऽ जाइत अछि। ध्यान रखबाक आवश्यकता जे अनौचित्य चित्त के मोन प्रसन्न करय वाला हुए। हास्य रस मे व्यंग्य एतेक नहि हुए जाहिसँ केकरो दुख वा कष्ट होइन। एकटा और बड महत्वपूर्ण रस जेकर असर जीवन आ समाज पर बड बेसी होइत अछि, ओ अछि वीर रस। उत्साह, स्थायी भाव जखन विभाव, अनुभव आ संचारी भाव में पुष्ट भऽ कऽ असखाद्य भऽ जाइत अछि, अस्वाद भऽ जाइत अछि, तखन वीर रस उत्पन्न होइत अछि। शास्त्रकार लोकनि एहन चारिटा क्षेत्रक चर्चा केने छथि, युद्ध, धर्म, दया आ दान। एहि चारू क्षेत्र सबके लक्ष्य राखि के जखन उत्साहक भाव जागृत आ परिपुष्ट होइत अछि, तखन वीर रस उत्पन्न होइत अछि। आ जखन इष्ट वस्तुक हानि, अनिष्ट वस्तुक लाभ, प्रेम पात्रक चिर वियोग, अर्थ हानि सँ जतय शोक भाव परिपुष्ट होइत अछि, ओहिठाम करुण रस होइत अछि। करुण रसक महत्व कतेको कारण सँ अछि। कोनो गपक दुख आ शोकक संवेदना बड गहीर आ तीव्र होइत अछि, तँ दोसर दिस जीवन में सहानुभूतिक भाव विस्तृत करैत अछि। तेसर आ बेसी महत्वपूर्ण गप जे मनुष्य के भोग भाव सँ साधना भाव दिस प्रेरित करैत अछि। एहि सबसे फराक एकटा रस अछि रौद्र रस, जेकर भाव क्रोध अछि। विरोधी पक्ष द्वारा कोनो मनुष्य, देश, समाज आ धर्मक अपकार वा अपमान करबा सँ ओकर प्रतिशोध में जे क्रोधक भाव उत्पन्न होइत अछि, व्याह रौद्र रसक रूप में अभिव्यक्त होइत अछि। श्रोता लोकनि, आइ काव्यक एतेक गप भऽ रहल अछि, तँ अपनो लोकनि सुनी ई काव्य पाठ।
1: गंगा, यमुना, सिंध, सरस्वती, पवित्र धार बहत जही ठाम, जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। सत्य अहिंसा मार्ग जकर हो, मानवता केर गीत प्रखर हो, वेद पुराण कुरान बाइबिल केर पाठ होइत हो आठो याम, जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। ज्ञान और विज्ञान में आगू नहीं रहलों कहियो हम पाछू, हमर ही अनुसंधानक बल सँ जग छूलक अछि उड़ि कऽ चान, जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। त्याग और बलिदानक पन्ना मानिक सँ जरल जनैछ जहान, पुष्पक अभिलाषाक अनुरूपे तत्पर सीमा पर तनल जवान, जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। सोनक चिड़ै कहबै छल जग में, लूटि नष्ट कैलक सुल्तान, तैयो सत्कार केलक सब धर्मक, तैं कहबै छ जगदेश महान, जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। उत्तर ठाढ़ मणि मुकुट हिमालय, दक्षिण पवित्र हिंद सागर नाम, बाम बाहि बंगालक खाड़ी, दहिन हाथ अरब सागर जलधाम, जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। जगत मातु एते ही केर बेटी, जगत पिता बेटा बनि राम, योद्धा सँ त्यागी जोगी धर, अवतरित होइत रहला अभिनाम, जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। धर्म कोनो हो कोनो कोनक निर्विघ्न पसारल अपन टांग, सबहक सत्कार केलक ई धरती, अमृत द केलक विस्पान, जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। जे न देश केर काज अबै छथि हुनकर जन्म निरर्थक निष्काम, अरे माइक बेटा वह कहबै छथि जे देश लय करैत किछु साँझ बिहान, जन्मभूमि थिक हमर अहाँ के, नाम जकर थिक हिंदुस्तान। जाति धर्म केर झगड़ा छोड़ू, भ्रष्टाचारक धार के मोरू, अहाँ थिकहुँ लाल भारत के, जग पुनः बनावी भारत महा।

जन्मभूमि थी हमर अहाँ के नाम जकर थी हिंदुस्तान। हमर दोसर कविता के शीर्षक है शहीदक सुमन। ओ फूल नहीं जगत में जे शहीद पर चढ़ाबी, ओ शब्द कहाँ फूरे जे सौर्य गीत गाबी। भगवान स्वार्थ बस भव शरणागति के दाता, एसना में पड़ल सदिखन सौ बन जगत विधाता। ओ फूल हम शहीदक पथ पर कोना बिछाबी, ओ फूल नहीं जगत में जे शहीद पर चढ़ाबी। ओ शब्द कहाँ फूरे जे सौर्य गीत गाबी। मातृभूमि लय समर्पित रक्षार्थ जे डटल छथि, निःस्वार्थ सेवा भावे सीमा ले जे अटल छथि। ओहि कर्म वीर त्यागी लय कोना क ओ फूल बीछ लाबी, ओ फूल नहीं जगत में जे शहीद पर चढ़ाबी। हे मातृभूमि रक्षक, हे युद्ध वीर हमर संरक्षक, माईक महान संतत जे प्राण पुष्प करे थी अर्पित। ओ चरण रज छी अनुपम हम मस्तक सँ जँ लगाबी, ओ फूल नहि जगत में जे शहीद पर चढ़ाबी। हो मंगल अहाँ के सदिखन, हे भारत के मंगल दाता। सब आस करत पूरा जग के परम विधाता, अछि भाव स्नेह अर्पित किछु दीप त जराबी। अछि भाव स्नेह अर्पित किछु दीप त जराबी, ओ फूल नहि जगत में जे शहीद पर चढ़ाबी। ओ शब्द कहाँ फूरे जे सौर्य गीत गाबी। हमर तेसर कविता गीत के रूप में मिथिल

कृष्णानंद मिश्र के स्वर में सुन रहा चलो ये गीत। अंत में आप सुने छी किछ शब्द विमर्श। एकटा शब्द छ डहकन। समैत आ जमा के भोजन करबाक बेर जे हास परिहास में गीत गाओल जाइत अछि तकरे डहकन कहल जाइत अछि। पहिने डहकन खूब गाओल जाइत छल, आब किछ कमी आयल अछि, तैयो गाम घर में अखनो डहकन के महत्व खूब अछि। एकटा शब्द अछि मौहक। विवाहक बाद बर के खीर खुएबाक परंपरा अछि। मधुपर्क सँ महुहक भेल, व्याह खीर खुएबाक क्रिया महुहक थिक। महुहक देख लेल कतेको गोटे बैसल रहै छथि, हकार नोत सेहो देख देल जाइ छनि। मिथिलाक विवाहक अनुपम विधि विधान। एहिके संग आब अपने लोकनि सँ आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।

सिंगरहार यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे। अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का प्रसारण होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब 36.63

0: बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमाली

0: इंडिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
1: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
3: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
4: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी जहां संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
3: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।

0: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के ये भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेकिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism.

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सुनते हैं पहला गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म है दिल चाहता है।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना हमने लिया है लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में। संगीत है उत्तम सिंह का। फिल्म है दिल तो पागल है।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए उदित नारायण की आवाज में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने। फिल्म है जलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं। अभी रुकते हैं छोटे से अंतराल के लिए, सुनते हैं ये संदेश। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जारी है अंतराल के बाद। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना श्रोताओं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के गुप्ता। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 9430029353 और 0627222481। समय याद रखें रविवार 17 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गाना हमने लिया है फिल्म दिल मांगे मोर से। आवाज है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाए हिमेश रेशमिया ने।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आखिरी नगमा सुनिए, फिल्म दिल तो बच्चा है जिसे। आवाज है मोहित चौहान की। नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे शिप्रा कुमारी और राजन कुमार मिश्र से कुछ सुगम संगीत।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुगम संगीत का आनंद ले रहे थे। कलाकार थे शिप्रा कुमारी और राजन कुमार मिश्र। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

फिल्मी नज्म का ये सफर शुरू करते हैं शाकिब जलाली के शेर के साथ। बदकिस्मती को ये भी गवारा ना हो सका, हम जिस पे मर मिटे वो हमारा ना हो सका।

0: वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखरी था। वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखरी था कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए।
1: जाने वो कैसे

इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता।

ये हम ही हैं कि तेरा दर्द छुपा कर दिल में, ये हम ही हैं कि तेरा दर्द छुपा कर दिल में, काम दुनिया के बदस्तूर किए जाते हैं।

हो दूर इस तरह कि तेरा गम जुदा ना हो, हो दूर इस तरह कि तेरा गम जुदा ना हो, पास आ तो यूं कि जैसे कभी तू मिला ना हो।

तेरे सुलूक का गम सुबह शाम क्या करते, तेरे सुलूक का गम सुबह शाम क्या करते, ज़रा सी बात पे जीना हराम क्या करते।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के 3रे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान

0: 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said, BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital Abu Dhabi tomorrow on the first leg of his five-nation visit. He will later visit the Netherlands, Sweden, Norway and Italy.